0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s next day.
1: नाइन्टीज में जो है लाइफ फास्ट नहीं थी, इसीलिए यादें स्लो मोशन में बनी। हेलो हाय वेलकम नमस्ते रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतराब के साथ, और यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। हेलो हेलो एंड वेलकम भाई, 90s वाली अंतरा आपके साथ जुड़ चुकी है। एंड यहाँ पर जो है पुरानी यादों का दरवाजा खोलते हुए, कभी नोटिस किया है कि अगर कोई आपसे पूछे कि 90s की सबसे बात जो है खास क्या लगती है आपको, जो अक्सर लोग पूछते रहते हैं, तो शायद हम किसी एक मूवी का नाम नहीं ले पाएंगे, किसी एक एक्टर का नाम नहीं ले पाएंगे या सिंगर का नाम नहीं ले पाएंगे। हम कहेंगे यार उस वक्त जो है सभी कुछ इतना अच्छा सा था, राइट, सब कुछ बड़ा धीरे धीरे होता था, फिल्म रिलीज होने का इंतजार करते थे, संडे मूवी का इंतजार करते थे, फेवरेट गाने का रेडियो पे आने का इंतजार करते थे, फोटो डिवेलप होने का इंतजार करते थे, स्कूल की समर हॉलीडेज का इंतजार, और इसीलिए हर खुशी की वैल्यू भी थोड़ी ज्यादा हुआ करती थी। 90s बॉलीवुड भी इसी फीलिंग से भरा हुआ था। एक गाना शुरू होने से पहले ही कहानी बिल्ड हो जाया करती थी, एक हीरो के एंट्री से पहले सस्पेंस बनता था, एक लव स्टोरी धीरे धीरे दिल में उतरती थी। नाउ एवरीथिंग हैड अ ब्यूटीफुल पॉज, और जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी, ना हर वक्त फोन हाथ में, ना हर मेमोरी की फोटो हमारे पास, ना हर मोमेंट की रिकॉर्डिंग हमारे पास, कुछ चीजें बस जी ली जाती थी, और फिर वही यादें सालों के बाद सबसे खूबसूरत कहानियां बन के आ जाती थी। इसीलिए मस्ती 90s मिक्सटेप सिर्फ नॉस्टैल्जिया का शो नहीं है, ये उन लम्हों को भी फिर से महसूस करने का सफर है जहां पर एक ब्लॉकबस्टर जो है वो कुछ भी बन जाया करती थी, चाहे वो उस टाइम का फैशन हो, चाहे उस टाइम के डायलॉग्स हो, चाहे वो उस टाइम पे नजर उठा के देखने का वो अंदाज हो। तो सीट बेल्ट बांधने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, खोल दो वो सीट बेल्ट, ठीक है, अगले कुछ घंटे जो है हम आराम से चलेंगे वही उन यादों की तरफ, जहां पे हर गली में क्रिकेट, हर रेडियो पे गाने, हर सिनेमा हॉल में सीटियां बजा करती थी, और हर बचपन में थोड़ी नहीं बहुत सारी मस्ती जरूर जरूर थी। तो शुरू करें मस्ती 90s मिक्सटेप ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: GG Mart, your personal grocer।

0: इन नाम से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
1: बिस्तर पे पड़े पड़े फैन को, सीलिंग फैन को चलते हुए देखना, चाहे वो कम वोल्टेज आने की वजह से ही धीरे धीरे घर घर घर, बट उसकी स्पीड के हिसाब से 90s के बच्चों का उसमें जोन आउट हो जाना, ऐसे सोच में पड़ जाना कि पता नहीं कौन सा साइंस दिमाग में हमारे कौन सा इन्वेंशन ही हो जाएगा आज की डेट में। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव मस्ती 90s मिक्स टेप आप सुन रहे हो, मैं हूं 90s वाली आंत्रा आपके साथ यहां पर। भाई वी ट्रस्टेड नंबर 5 मोर देन साइंस डिड। 90s के घरों में एक साइंटिस्ट हर फैमिली में हुआ करता था और उसकी लैब हुआ करती थी सीलिंग फैन, नहीं सीलिंग फैन का रेगुलेटर। गर्मी जैसे ही शुरू होती थी, एंड कानपुर में तो बहुत ही, आज भी बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो सीधा हाथ जाता था स्पीड नंबर 5 पे। ठीक है, 3-4 पे तो हम मानते ही नहीं थे, सीधा 5 पे रेगुलेटर घुमा के जो है डाल दिया जाता था, जैसे फैन को नहीं रॉकेट को हम लॉन्च कर रहे हो। और फनी बात यह थी, हम सबको लगता था कि जितनी बार रेगुलेटर को इधर उधर घुमाएंगे फैन उतनी जल्दी फास्ट हो जाएगा। 5 पे है, फिर एक बार 0 पे ले जाके फिर 5 में करते हैं, क्या पता 5 और ज्यादा तेजी से चलने लगे। जैसे फैन को याद दिला रहे हो, बॉस फुल स्पीड पे काम करो, अभी हुआ नहीं है, हम जो 5 की स्पीड सोच रहे हो अभी तक तुम वहां पे पहुंचे नहीं हो। और अगर हवा कम आ रही है तो प्रॉब्लम फैन में नहीं होती थी, हम या तो रेगुलेटर को दोबारा घुमा देते थे, वो ट्राई खत्म हो जाता, तो भाई वोल्टेज की कमी है। हाँ फिर कुर्सी पे अक्सर खड़े होकर हम देखते थे कि यार पंखा स्लो तो नहीं चल रहा। फिर पेरेंट्स अगर घर पे हो तो जो है ऐसे क्लासिक डायलॉग्स भी आए करते, दरवाजा बंद करो, हवा भाग रही है, खिड़की बंद करो। उस वक्त हमें पूरा यकीन था कि रेगुलेटर बार बार घुमाने से परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, साइंस क्या कहती थी उससे हमें उतना ज्यादा कोई मतलब नहीं हुआ करता था। उस रेगुलेटर की वो टक टक टक टक वाली फीलिंग भी कितनी ज्यादा सेटिस्फाइंग होती थी, नहीं एक मैकेनिकल क्लिक और लगता था कि अब तो एंटार्क्टिका वाली हवा ही आएगी यहां से। आजकल कितना फैंसी सा हो गया ना, रिमोट से फैन चल रहे हैं, ऐप से कंट्रोल हो रहे हैं, वॉइस कमांड से स्पीड बदल जा रही है बॉस, लेकिन उस गोल रेगुलेटर को उंगली से टक टक टक घुमाने का जो सेटिस्फैक्शन था वो किसी स्मार्ट फैन में नहीं है दोस्त। इसीलिए तो 90s वाली बातें हमें इतनी अच्छी लगती हैं, है ना, वापस से टक टक टक वाले टाइम पर जाकर वापस से रियलिटी में आना। ओके, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, लेट्स स्टे हियर फॉर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स, है ना।

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: They were not chosen.
3: उसकी माँ का नाम जानकी था. हम इसे सीता बुलाएंगे.
4: Alpha.
2: The newest chapter in the YRF spy universe.
5: पर इस बार सीता आज लंका खुद चलाने आई.
2: Alia Bhatt and Sharvari in India's first female-led action spectacle, where every decision could be their last.
6: Alpha program उसका जुनून है, और जो भी उसके रास्ते में आता है, वो उसे मार देता है.
2: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island-wide at the cinemas near you. Brought to you by Homescreen Entertainment. पेंसिल से कसेट की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना. ये है मस्ती 90s मिक्स टेप, जाने जाना. नाइन्टीज का कॉलेज, बाय गॉड की कसम, ऐसा लगता था कॉलेज चले जाएंगे तो पढ़ाई ही छूट जाएगी, हमारी बहुत बड़ा काम हो जाएगा. क्योंकि वही चीज दिखाई गई थी ज्यादातर बॉलीवुड 90s वाले कॉलेजेस में. नहीं, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराब के साथ, और यहाँ पर चल रहा मस्ती 90s वीक स्टे, बिकॉज वी सॉ मूवीज में जो है, यू नो, आप यूनिफॉर्म से बाहर आ जाते हो, जो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आप तैयार होकर हाथ में एक दो बुक किताब ऐसे लेकर कॉलेज पहुंच जाया करते हो. सो कैंपस वॉज मोस्टली फैशन, राइट? 90s बॉलीवुड का कॉलेज जो हो, अलग ही यूनिवर्स था, राइट? एडमिशन कॉलेज में होता था, लेकिन पढ़ाई कब होती थी ये तो. वेल, हीरो कॉलेज आ रहा है, ठीक है, जीन्स एंड लेदर जैकेट, कूल सनग्लासेस, शोल्डर पे बैग भी नहीं है, हाथ में बुक्स हैं थोड़ा बहुत, बस स्टाइली स्टाइल एंड हीरोइन मैचिंग आउटफिट्स, कलरफुल क्लिप्स, डिजाइनर बैकपैक्स, जिनमें शायद बुक्स से ज्यादा इमोशन हुआ करते थे. 90s की कितनी कॉलेज मूवीज जो है, बिल्कुल मेरे कॉलेज की एक जन्नत की कोई हूर नहीं, मेरे कॉलेज की एक लड़की है, एंड हाउ कैन वी फॉरगेट अजय देवगन कमिंग, एंट्री मारना कॉलेज में वो एकदम स्प्लिट करते हुए बाइक पर. आई मीन, ओ माय गॉड, कॉलेज तो यही है, राइट? मैंने प्यार तुम्ही से किया है, वो क्या, वो रूम में पूरे दुनिया को ऐलान करना कि मैं तुमसे प्यार कर, इट्स बी सो 90s कॉलेज, डांसफुल, रोमांसफुल, लेकिन क्लासरूम, हाँ, वो कभी कभी दिखाई जाती थी. वेल, यहाँ पे 90s के कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स और प्रॉप की टीम्स भी कई बार इंटेंशनली हीरोज को कम बुक्स या बिल्कुल बुक्स के बिना दिखाते थे. रीजन बीइंग, हैवी बैग्स या बुक्स एक्टर की बॉडी लाइन और कॉस्ट्यूम को कवर कर दिया करते थे. सो डांस, एक्शन और वॉकिंग शॉट्स में सिल्वेट जो है वो क्लीन दिखे, इस वजह से इसको किया जाता था. इसीलिए हीरोज को लाइट रखा जाता था, मतलब फैशन भी कैमरा के हिसाब से डिजाइन किया जाता था. एंड कभी आपने नोटिस किया, हीरो को असाइनमेंट सबमिट करना हो तब भी बस एक ही नोटबुक या कुछ पेपर उसको पकड़ा दिए जाते थे, एग्जाम देने जाना हो तब भी एक ही फाइल दी जाती थी. रियल कॉलेज स्टूडेंट्स सोच रहे होते थे उस टाइम पे कि भाई ये जो हमारा प्रैक्टिकल फाइल है, यही हमारा 2 किलो का है. ये कौन से वाले कॉलेज है जिसके बारे में हमें नहीं पता. फिर भी हम उन्हें देखकर वही हेयर स्टाइल करवाते थे, वैसी शर्ट्स ढूंढते थे, वैसे शूज पहनते थे, वैसी ड्रेसेस पहनते थे, क्योंकि 90s बॉलीवुड का कॉलेज रियलिटी से ज्यादा ड्रीम कैंपस हुआ करता था. वहां अटेंडेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी एंट्री कैसी हुई मूवी में, लेक्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंट था लव सॉन्ग, हीरोइन कहाँ है, हीरो कहाँ है, एंड लाइब्रेरी से ज्यादा फेमस था कैंटीन. 90s के कॉलेज की फिल्म्स इसीलिए इतनी फील गुड फीलिंग इसीलिए आती है क्योंकि उसका सच्चाई से कुछ लेना देना ही नहीं होता था. काश हम ऐसे कुछ कॉलेज में होते, नहीं, आज भी हम यही सोच रहे होते हैं. सुपर 90s, स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, आप सुन रहे मस्ती 90s मिक्स टेप.

0: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: सुल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: वेलकम बैक मस्ती 90s मिक्स टेप में, आप हो अंतरा के साथ ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। भाई 90s का बॉलीवुड, क्योंकि अभी थोड़ी देर कॉलेज वाले बॉलीवुड की बात हो रही थी, तो थोड़ा सा रोमांस और डायलॉग्स की भी बात हो जाए, उसमें थोड़ा सा कलर डाल देते हैं। नाउ रोमांस सिर्फ डायलॉग से नहीं, कलर से डेफिनेटली हुआ करता था। कभी आप सोचो, हीरो ने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है, तो हीरोइन का दुपट्टा भी कहीं ना कहीं उधर आपको ब्लू मिल ही जाएगा। हीरो अगर व्हाइट में है तो हीरोइन पेस्टल शेड में मिलेगी। हीरो मरून में है तो हीरोइन के आउटफिट में वही फैमिली ऑफ कलर्स मिलेंगे। सो 90s के वक्त ये काफी एक ट्रेंड था, अ ह्यूज वन। लेकिन आज देखते हैं तो फिर तब समझ में आता था कि ये कोइंसिडेंस नहीं था। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, 90s में कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट्स जो है लीड पेयर के आउटफिट्स को अलग अलग डिजाइन नहीं करते थे, वो पूरे गाने का कलर पैलेट जो है वो प्लान किया करते थे, क्योंकि उस वक्त फिल्म स्टॉक पर कलर्स आज के डिजिटल कैमरास की तरह मैनिपुलेट नहीं किए जा सकते, राइट? सो इसीलिए हीरो और हीरोइन के कॉस्ट्यूम्स, लोकेशंस और बैकग्राउंड्स को इस तरह कोऑर्डिनेट किया जाता था ताकि पूरा फ्रेम विजुअली ब्यूटीफुल और बैलेंस्ड लगे। मतलब लव स्टोरी सिर्फ स्क्रिप्ट में नहीं, कॉस्ट्यूम कलर्स में भी लिखी जाती थी। और फिर क्या क्या जो है कॉम्बिनेशंस हुआ करते थे, येलो सरसों का खेत एंड मस्टर्ड के शेड्स, स्नो के लोकेशंस तो ब्राइट रेड स्वेटर, ग्रीन ग्रीन अगर वादियां दिख रही हैं तो व्हाइट कॉस्ट्यूम्स भी दिख रहे हैं। हर फ्रेम एक पेंटिंग जैसा लगता था। एंड उस वक्त हमें फैशन मैचिंग का कॉन्सेप्ट भी आई थिंक ये कि मैचिंग होना चाहिए, वो भी बॉलीवुड की देन थी, राइट? 90s में रियल लाइफ में भी लगता था कि अगर उसने ब्लू पहना है तो मैं भी ब्लू पहनूंगी और या पहनूंगा। सो 90s के फिल्म मेकर्स को पता था कि कभी कभी ऑडियंस डायलॉग अगर भूल भी जाए, लेकिन एक खूबसूरत विजुअल कभी नहीं भूलेगी। और इसीलिए पहला नशा या फिर तुझे देखा तो ये जानो सनम, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, या कोई भी रोमांटिक गाना उठा के आप देख लो, तो सिर्फ वो मेलोडी नहीं था, उनके हमें कलर्स भी याद आते हैं। ऑनेस्टली बहुत अच्छे से याद आते और ज्यादा यू नो दे हैव स्टेड विद अस, एंड दैट्स द ब्यूटी एंड मैजिक ऑफ द 90s, दैट इट्स सो एम्बाइब्ड इन अस कि हम लोग तुरंत से तुरंत एकदम बता, ओ अच्छा ये वाला उसमें तो उसने ये, आई से टिप टिप बरसा पानी, कांट यू सी येलो सारी एंड रवीना टंडन, इट्स लाइक या सो हियर यू गो। स्टे ट्यून्ड टू मस्ती 90s मिक्सटेप।

जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन, योर डोज ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया, मस्ती 90s मिक्सटेप विद आपकी 90s वाली अंतरा, थर्सडेज 11 AM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: कसर से कसर की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: I'm so into Bollywood mode at this point of time, but कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए। गलियारे 90s के तो इतने सारे हैं, कहीं पर भी चलते जाओ तो एक याद से दूसरी याद जो है वो कनेक्ट हो जाया करती है। ये तो आपको अब तक पता ही चल गया होगा। मस्ती 90s mixtape आप सुन रहे हो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। मैं हूँ अंतरा आपके साथ। यहाँ पर भाई अगेन बॉलीवुड के 90s की बात करें तो एक और चीज आपको नोटिस कराना चाहती हूँ कि हीरो हीरोइन कभी भी कैमरा में सीधे मतलब डायरेक्टली कैमरा की ओर नहीं देती थी, काइंड ऑफ लुक्ड अवे। या कोई भी रोमांटिक, जब बहुत ही रोमांटिक गाना है बहुत ध्यान से अगर देखें तो हीरो और हीरोइन एक दूसरे को देखते थे लेकिन कैमरा को ऑलमोस्ट कभी नहीं देखते थे। सो देख रहा है, ठीक है, हीरोइन शर्मा के नज़रें झुका रही है, कभी आसमान की तरफ देख रही है, कभी दूर कहीं देख रही है, लेकिन कैमरा की तरफ बिल्कुल भी नहीं। और पता है, ये सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, ये फिल्म मेकिंग का एक स्मार्ट ट्रिक था। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बॉलीवुड की बात मैं बताने वाली हूँ। 90s के डायरेक्टर्स अक्सर एक्टर्स को कहते थे कैमरा लेंस में मत देखो, उसके थोड़ा साइड या उसके पास देखो। रीजन बीइंग, ऑडियंस को ये लगना चाहिए कि वो सीन को क्वाइटली विटनेस कर रहे हैं, ना कि एक्टर्स उनसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं। इस टेक्निक से रोमांस और भी नेचुरल और इंटीमेट फील हुआ करता था। सो दो दिल मिल रहे हैं, जैसे ये गाना है, हार्डली शाहरुख खान सीज लाइक डायरेक्टली टुवर्ड्स द कैमरा, राइट? और हीरो अचानक सीधा कैमरा में देख कर अगर गाने लगे तो ये वाई, ऐसे क्यों? 90s के फिल्म मेकर्स को पता था प्यार जितना कम एक्सप्लेन किया जाए उतना ज्यादा महसूस होता है, इसीलिए नजरें भी कहानी का हिस्सा हुआ करती थी। कभी मिलती थी, कभी चुरा ली जाती थी, कभी सिर्फ एक सेकंड के लिए टकराती थी और वही एक सेकंड पूरे गाने का यू नो एकदम दिल जानो जिगर बन जाता था। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में हर फोटो और वीडियो को सीधा कैमरा देख कर बनती है, राइट? तब प्यार कैमरा के लिए परफॉर्म नहीं करते थे, एक दूसरे के लिए होता था। 90s के लव सॉन्ग्स ऐसे ही थोड़ी ना हमको लगते हैं कि एकदम दिल को चीरते हुए निकल जाएंगे। दे आर जस्ट सो मैजिकल एंड सो ब्यूटिफुल, राइट? लव इट, लव इट, एंड लव डूइंग दिस शो एज वेल, विच इज मस्ती 90s मिक्स टेप ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
2: आंखें खुली हो या हो।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
2: गेम स्पिरिट कैंसिल हो गया है और ये जब सुनते थे 90s के स्टूडेंट्स, उनको लगता था यार एक ही तो दिन में आज अच्छा पीरियड था, वो भी कैंसिल हो गया मेरे जैसे स्टूडेंट्स। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, मैं हूँ अंतरा आपके साथ यहाँ पर, और चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। भाई बेस्ट सब्जेक्ट वॉजेंट अ सब्जेक्ट माई डियर फ्रेंड्स। 90s के स्कूल में एक अनाउंसमेंट जब ये वैली होती थी जो पूरी क्लास का मूड एक सेकेंड में बदल देती थी। टीचर आए, अटेंडेंस ली और फिर बोले भाई आज जो है गेम्स पीरियड नहीं होगा। बस वो जो कलेक्टिव डिसअपॉइंटमेंट आती थी आवाज में, चेहरों पे, उसका कोई जवाब ही नहीं है। लाइक आप बताओ, मैथ्स कैंसिल हो जाए तो खुशी होती थी, लेकिन ये गेम्स पीरियड, ओहो, दिल टूट ही जाता था हमारा। क्योंकि गेम्स पीरियड एक पीरियड नहीं था यार, फ्रीडम का ऑफिशियल लाइसेंस हुआ करता था। स्कूल शूज की जगह हमें कैनवस शूज पहनने पड़ते थे, क्लासरूम की जगह प्लेग्राउंड होता था। एंड फॉर द बॉयज इन आवर क्लासरूम, या तो फुटबॉल खेल रहे हैं, या तो यू नो बास्केटबॉल पे चले गए हैं, या फिर जाके इन लोगों ने क्रिकेट चालू कर दिया था। एंड यू नो ये गेम्स पीरियड में भी हर कोई एक्सरसाइज करने नहीं जाता था, ये वाली लिबर्टी भी हमें वहाँ पे मिल जाती थी। एंड आई रिमेम्बर प्लेइंग खो खो एंड कबड्डी एंड एवरीथिंग, और इतनी जल्दी निकलता था ये टाइम कि क्या ही बताओ। बट वही जो है ना, दोस्तों के साथ ग्राउंड के कोने कोने में यू नो जहाँ पे जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, गप्पे चल रही है, जो मर्जी आए किया जा रहा है, लेकिन क्लास के अंदर रहना वो ऑप्शन किसी को पसंद ही नहीं था। और जब गेम्स के सर जो है विसल दूर से सुनाई देती थी तो पहले एक्साइटमेंट हो जाती थी कि मैम नो गेम्स पीरियड, लाइन बनाओ, ग्राउंड चलो, एंड 40 मिनट्स में कोई होमवर्क का लोड नहीं, यूनिट टेस्ट का प्रेशर नहीं, बस दौड़ते रहो, भागते रहो, हंसते रहो, बातें करते रहो, बेल बजने से पहले एक लास्ट राउंड और खेलना, ओ माय गॉड। एंड स्पेशली आई टेल यू, गेम्स पीरियड अगर लास्ट पीरियड हो या लास्ट सेकेंड पीरियड बना दिया क्या हो, फिर तो जो खुशी का आलम हुआ करता था ना, इट इज़ द सेम फीलिंग जो आप अपने लास्ट एग्जाम लास्ट पेपर देने जाते थे ना, कि भाई इसके बाद तो छुट्टी। बिल्कुल एग्जैक्टली वो वाला एक्साइटमेंट हम फील किया करते थे। कोई लौटा दे ये गेम्स पीरियड वाले दिन, नहीं ऐसा ही होता है अडल्ट होने के बाद, यही लगता है कि वही दिन अच्छे थे ब्रो। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, स्टे ट्यून्ड टू मस्ती 90s मिक्स टेप।

0: B were not chosen. They were created.
1: उसकी माँ का नाम जानकी था. हम इसे सीता बुलाएंगे.
2: Alpha.
0: Alpha. Alpha. The newest chapter in the YRF spy universe.
3: पर इस बार सीता आज लंका खुद चलाने आई.
0: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडियाज फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट.
2: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है.
0: बॉर्न टू फाइट बिल्ट टू सर्वाइव. अल्फा रिलीजिंग 3rd जुलाई आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू. ब्रॉट टू यू बाय होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट.

0: पेंसिल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हार पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: चप्पल उल्टी हो गई, सीधी करो वरना कुछ अच्छा नहीं होगा। अरे टाप दिया, अरे ये लंबा नहीं होगा, बीजा खा लिया, अब तो पेड़ निकल के रहेगा पेट में से। रेडियो बस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे मस्ती 90s मिक्स टेप। मैं हूं अंतरा, यहां पर आपके साथ। भाई 90s में हर घर के पास ऐसे सेट ऑफ बिलीव्स हुआ करते थे, ये सिर्फ रूल्स नहीं, ये अनरिटन बिलीव्स हुआ करते थे, और उनमें से ये एक था कि लगभग हर इंडियन घर में ये कॉमन था। क्या अब भी काफी घरों में ये कॉमन है? इनफैक्ट मेरी मॉम तो अभी भी कहती है कि वो चप्पल उल्टी हो गई है, उल्टी तो रहने नहीं दे सकते, उसको सीधी करनी पड़ेगी। दैट इज राइट। आप आराम से घर में घूम रहे हो और या पीछे से आवाज आती थी, अरे चप्पल सीधी कर दो, हम पूछते थे क्यों, बस सीधी कर दो, ठीक है? क्योंकि उसके बाद यूजुअली वही यूजुअल सी लाइन आती थी कि उल्टी चप्पल अच्छी नहीं होती है। क्यों अच्छी नहीं होती है वो भी तो बताना उनको जरूरी था, हमें जानना भी जरूरी था, लेकिन 90s में इतने एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं चलते थे। उतनी सी बात है, सीधी कर दो, अच्छा नहीं होता है। ऑनेस्टली कभी कभी तो हम खुद भी किसी की उल्टी चप्पल को देखकर ऑटोमेटिकली सीधा, इट इज मसल मेमोरी जिसको कहते हैं ना, ये वैसे हो गए हैं। मतलब आपसे मैं क्या ही बताऊँ, मसल मेमोरी की ऐसी हालत है कि अगर मैं आपसे जाते जाते टकराई, ठीक है, आप बैठे हुए हो और आपके पैर के पास कुछ पड़ा हो और मैं उसको उठाने जाऊँ और मेरा नी आपसे लग जाए या कुछ हो जाए, टकरा जाऊँ आपसे, तो ऑटोमेटिकली मेरा हाथ जैसे प्रणाम करते ना वैसे ऊपर नीचे ऐसे करके, वेरी ऑटोमेटिकली, मुझे ज़्यादा कुछ कर, इट्स सो मच इन टू मी। सो 90s का बचपन ऐसे ही छोटे छोटे घरेलू बिलीफ से आई थिंक भरा हुआ था। शाम के बाद झाड़ू मत लगाओ, किताब को पैर मत लगाओ, उल्टी चप्पल सीधी कर दो, सही था गलत था ये बहुत अलग बात है, लेकिन उन बिलीव्स में एक चीज जरूर थी, घर वालों ने अपनी दुनिया बना रखी थी, अपने ट्रेडिशंस, अपनी बातें, अपना ही एक लॉजिक बना रखा था। आज हम काफी आगे इवॉल्व हो गए हैं, मॉडर्न हो गए हैं, साइंस पढ़ ली है, गूगल कर लिया है, चैट जीपीटी कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कहीं पर भी चप्पल उल्टी दिखे, हाथ या पैर ऑटोमेटिकली उसको जाकर सीधा कर देता है। अगेन यू विल आस्क व्हाई, भाई क्योंकि है, इट इज व्हाट इट इज। अब तो हम भी उस स्टेज पे आ चुके हैं कि हमें ना एक्सप्लेनेशन चाहिए, हम करते हैं जस्ट बिकॉज वी डू इट राइट। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर ऐसी ही 90s की बातें और 90s की यादें जो हैं बिल्कुल ताजा करते रहेंगे, लेकिन साथ साथ में 90s के गाने भी चलते रहने चाहिए, राइट? लेट्स गो।

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
1: रानी तो पॉकेट में चली जाती थी, कवर ही तो भूल जाया करते थे, है ना। रेडियो बस्ती 24/7 लाइव अंतराब के साथ मस्ती 90s मिक्स टेप पर अब चलते हैं कैरम बोर्ड की तरफ। 90s के गेम्स की बात हो और कैरम की बात ना हो तो ऐसे कैसे ही हो सकता है यार, कम ऑन। वो जो सेटअप ही होता था, वो सेटअप ही कितना क्लासिक होता था, ठीक है। कैरम के आसपास जो चार स्टूल लगते थे वो तो एक बात थी, फिर वो जो कैरम को नहलाया जाता था पाउडर से, जो भी पाउडर आपके पास अवेलेबल हो। देखिए, कुछ घरों में तो एक्चुअली में कैरम बोर्ड वाला पाउडर जो है वो अवेलेबल होता था, लेकिन हमारे घर में क्या यूज होता था, पॉन्ड्स वाला, जो भी बेसिकली पॉन्ड्स, नाइसिल, जिसमें भी पाउडर बाकी हो और जिसमें जिस लेवल की डांट पड़े उसको यूज करने के बाद। बट हम ऐसे उसको लेयर में कि जो हमारा स्ट्राइकर और गोटिया है वो से सर सर सर गति हुई जाए एक तरफ से दूसरी तरफ। सो 90s के इस बचपन के इस रिकॉर्ड में इस गेम ने हमें एक्साइटमेंट के साथ साथ हार्ट ब्रेक भी काफी दिया हुआ है। दैट्स राइट, वो रॉयल मोमेंट कि क्वीन पॉकेट करना है, वेरी गुड। जैसे ही हमारी रानी कलर की क्वीन पॉकेट हुई, दिल में सेलिब्रेशन शुरू हो गया, चेहरे पे स्माइल आ गई, लगने लगा यार अब तो हम जीत ही गए, एकदम कॉन्फिडेंस आ जाता था, हम लोग अपना शोल्डर वोल्डर झटक के एकदम तैयार हो जाते थे। बस अगला शॉट मिस हो गया क्योंकि कवर लेना ही भूल गए हम एक्साइटमेंट में। सामने वाला जो है प्लेयर सीधे एकदम बोलता था कि भाई क्वीन वापस सेंटर में रखो, चलो चलो, हो गया बहुत। उसी सेकंड हीरो से जीरो बन जाया करते थे। सच बताइए कितनी बार ऐसा हुआ है, ठीक है, क्वीन पॉकेट करना मुश्किल था, राइट, लेकिन उसके बाद कवर लेना उससे भी ज्यादा मुश्किल। और फिर वो पूरी स्ट्रैटेजी बदल जाती थी, सब बोलते थे पहले कवर देख ले, क्वीन बाद में ले लेना, लेकिन एक्साइटमेंट में कौन सुन कौन रहा है उनको। कैरम वैसे भी सिर्फ गेम नहीं था, घर की डाइनिंग टेबल फ्लोर पे बिछा बोर्ड, पाउडर की खुशबू, स्ट्राइकर पे परफेक्ट फिंगर पोजीशन और हर शॉट के बाद फाउल है, नहीं है, दोबारा से मार। 90s में टूर्नामेंट ड्राइंग रूम में हुआ करते थे एंड स्पेक्टेटर होता था पूरा घर। इसीलिए कैरम ने हमें एक ये छोटी सी लाइफ लेसन भी दे दी, सिर्फ अपॉर्चुनिटी मिल जाना इनफ नहीं होता, उसे कंप्लीट भी करना पड़ता है। क्वीन पॉकेट करना और कवर लेना दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट थे। आजकल गेम वर्ल्ड has just gone crazy technology wise and visual effects wise and everything. Restart button होता है, लेकिन कैरम के बोर्ड पे एक गलती और क्वीन फिर से सेंटर में आ जाती थी, ठीक है। ओ गॉड, सीरियसली नाउ आई फील लाइक प्लेइंग कैरम बोर्ड दिस वीकेंड। आई जस्ट रैंडमली टॉक अबाउट थिंग्स ओवर हेयर एंड आई फील लाइक डूइंग इट। डू आई एंड अप डूइंग इट, दैट इज अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। गाने सुनते हैं 90s वाले। स्टे ट्यून्ड।

जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन, योर डोज ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया, मस्ती 90s मिक्सटेप विद आपकी 90s वाली अंतरा, थर्सडेज 11 AM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

प्लास्टिक की बाल्टी, सच अ 90s थिंग ब्रो, बहुत ही ज्यादा। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं मंत्र आपके साथ और यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप, हमारा 90s वाला मल्टीपर्पज चाइल्डहुड। 90s के घरों में अगर किसी एक चीज को एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड मिलना चाहिए तो आई थिंक वो प्लास्टिक की बाल्टी को मिलना चाहिए। मतलब उस बेचारी का असली काम क्या था मुझे क्या बताओ, आप बताओ। नहाने की बाल्टी बिल्कुल नहीं, सुबह बाथरूम, दोपहर को कपड़े भिगोने के लिए, शाम को पोछा लगाने के लिए, कभी टेरेस पे पानी भरने के लिए, कभी पौधों को पानी डालने के लिए, कभी आम ठंडा करना है तो उसके लिए, मतलब एक बाल्टी की पूरी डे की शिफ्ट होती थी शिफ्ट। एंड घर में अगर गेस्ट आ जाए तो वही बाल्टी बाथरूम से निकल कर कार वॉशिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो जाया करती थी। कभी उसमें टॉयज भर दिए, कभी दिवाली की सफाई का सामान कर दिया। हमारे यहाँ तो दिए भी जो है कभी कभी बाल्टियों में पहले गीला करना पड़ता है ना, उनको गीला करके रखना पड़ता है। सो कभी घर शिफ्ट करते वक्त टेम्पररी उसको स्टोरेज बॉक्स ही बना लिया, काफी सारी चीजें उसमें डाल दी और उसमें डाल के उसको शिफ्ट कर दिया। एंड बचपन में बाल्टी का एक और यूज था, उसे उल्टा करके स्टूल बना, मतलब कुछ भी करा लो। हम इतने ज्यादा जुगाड़ू जो है, 90s द जुगाड़ू जनरेशन, आई टेल यू, उस पर बैठ कर नहा लो, उसको उल्टा करके तबला बजा दो। 90s के घरों में चीजें सिर्फ एक काम के लिए कभी भी नहीं हुआ करती थी, उनकी वर्सेटैलिटी ही उनकी सुपर पावर थी। नहीं, आज हम हर काम के लिए अलग यू नो प्रोडक्ट यूज करते हैं। आई हैव अ लॉन्ड्री बास्केट, ठीक है, हर चीज के बॉक्सेस एकदम सेपरेटेड है, ऑर्गेनाइज्ड है, स्टोरेज बिन है, बाहर पानी जो है पौधों को डालना है तो उसके लिए अलग जो है कैंटर ला रखा है, खूबसूरत भी चीजें लगनी चाहिए। ये सारी चीजें पहले नहीं थी उस टाइम पे, 90s में एक प्लास्टिक की बाल्टी सब संभाल लिया करती थी। और उस बाल्टी से सिर्फ पानी नहीं उठता था, पूरा घर चलता था। याद आई, आपके घर में कौन से कलर की बाल्टी है? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंड आई रिमेम्बर ये नीले रंग की एक बाल्टी जो हमारे घर में, पता नहीं वो जब बिल्कुल क्रैक ही हो गई, टूट गई, तो उसको मम्मी ने शायद पोछे की बाल्टी बना दी। एंड उसके बाद तो जब उसमें से भी नीचे से पानी चूने लगा तो उसके बाद आई थिंक उसको फेंका गया फाइनली। बट आई हैव मेमोरी ऑफ, स्ट्रॉन्ग मेमोरी ऑफ दैट पर्टिकुलर नीले कलर की वो बाल्टी। आई एम श्योर ये नीला और लाल, लाइक दीज वर द टू कॉमन बाल्टी कलर्स, नहीं या फिर वो एक बहुत ही खाया हुआ च्युइंगम का वो जो एकदम पिंक कलर होता है ना उस कलर की भी बाल्टियां मिला करती थी। ओ गॉड, दैट वाज अ वियर्ड डिस्क्रिप्शन।

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
2: नाइन्टीज के हेयर फ्लिप्स का राज क्या था, बताओ बताओ। मैं बताऊंगी ना, क्योंकि काम ही मेरा ये है, मस्ती 90s मिक्स टेप पे रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतरा आपके साथ यहाँ पर। एंड भाई, बिहाइंड एवरी मैजिकल हेयर फ्लिप एक फैन ऑपरेटर हुआ करता था। सो वेल, जब 90s के फिल्मों में हीरोइन बस धीरे से उड़ती थी और उसके बाल बिल्कुल परफेक्ट स्लो मोशन में उड़ते थे कि एक स्ट्रैंड भी ज्यादा नहीं, एक स्ट्रैंड कम नहीं, जैसे हवा ने भी लाइक पूरी कोरियोग्राफी फॉलो कर रखी हो, हम पहले सोचते थे कि यार इनके बाल इतने परफेक्टली कैसे उड़ रहे हैं, कोई सीक्रेट

शैम्पू, कोई स्पेशल जो है ऑयल, नहीं जी नहीं। सो 90s की फिल्म में जो हुआ करता था, हेयर मूवमेंट को नेचुरल हवा के भरोसे बिल्कुल नहीं छोड़ते थे। सेट पर डेडिकेटेड फैन ऑपरेटर्स होते थे जो बड़े इंडस्ट्रियल फैंस को एग्जैक्टली राइट मोमेंट पर ऑन किया करते थे। डायरेक्टर जो है वो एक्शन बोलते और एक्शन पे जो है एक्टर मार्क पे आता, फैन ऑपरेटर टाइमिंग के साथ हवा चलाता। इसीलिए हीरोइन का हेयर फ्लिप हर टेक में लगभग सेम सेम दिखा करता था। और सिर्फ हीरोइन के बाल ही नहीं, दुपट्टा भी वही डायरेक्शन में उड़ता, पेड़ के पत्ते भी उसी डायरेक्शन में, हीरो की शर्ट भी वही डायरेक्शन में, मतलब हवा भी उस जमाने में असिस्टेंट डायरेक्टर की टीम का हिस्सा लगा करती थी। और बेचारे फैन ऑपरेटर्स, उनका नाम तो पोस्टर पर कभी आया ही नहीं, लेकिन उनकी टाइमिंग के इतने आइकॉनिक रोमांटिक सीन्स जो हमें दिए हुए हैं, जस्ट इमेजिन अगर हवा एक सेकंड लेट चलती या उल्टे डायरेक्शन में चलती तो पूरा शॉट दोबारा, राइट? 90s के फिल्म मेकर्स को पता था रोमांस सिर्फ एक्सप्रेशन से नहीं बनता, कभी कभी एक हल्की सी हवा भी दिल को जीत जाती है। आजकल CGI से बहुत सारा कुछ क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन तब मैजिक कंप्यूटर नहीं, क्रू की परफेक्ट टाइमिंग जो है उसको मैजिक क्रिएट किया करते थे। और आज भी जब भी हम कोई भी रोमांटिक गाना देखते हैं और सुनते हैं 90s के टाइम का, और ऐसी हीरोइन के हवा में बाल जो है वो बिल्कुल परफेक्टली लहराते हैं एंड एवरीथिंग थे, नाउ ऑनवर्ड्स एवरी टाइम यू वॉच दैट जस्ट इमेजिन एंड से थैंक यू टू दैट अमेजिंग फैन ऑपरेटर एज वेल। बहुत अंडर रेटेड है, वी नेवर टॉक अबाउट द फैन ऑपरेटर्स, राइट? ना उनका उधर नाम मेंशन, ना हम बात करते हैं, बट देन टाइमिंग वॉज सो प्रेशियस amongst all of these things. मैंने सोचा 90s की इतनी सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, why not give them also a little bit of credit, right? Radio Masti 24/7 live पर रही हमारे साथ।

Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

रील से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। गेट के बीच में से हाथ निकाल के लॉक को खोलना है ना, कर दिया मैंने एकदम 90s वाली बात। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है बताओ आप। मस्ती 90s मिक्स टेप में हूँ, 90s वाली आंत्रा यहाँ पर आपके साथ। एंड 90s के बच्चे गूगल से स्मार्ट नहीं बनते थे, जुगाड़ से स्मार्ट बनते थे, और उस जुगाड़ का एक लेजेंडरी एग्जाम्पल यही गेट के बीच में से हाथ निकाल के अंदर का लॉक खोलना। सो गेट का वो जो आयरन वाले गेट जो है, अगर वो बंद होते थे, बेल बजाने का पेशेंस ही नहीं है, ठीक है, और किसी को भी लाइक बाहर से चिल्ला के आवाज देने का भी अगर मूड नहीं है, तो सीधा हाथ गेट की ग्रिल के बीच से अंदर और थोड़ा सा और स्ट्रेच ऐसे करके, फिर क्लिक, और उसके बाद ऐसे करके ऊपर नीचे, क्योंकि वो वाले कुंडी वाले होते थे ना लॉक्स, तो वो लॉक इस तरह से खुला करते थे। एंड उसको करके ऐसा फीलिंग ऐसी आती थी कि मिशन इम्पॉसिबल कंप्लीट। अगर हाथ थोड़ा छोटा पड़ गया तो पूरी बॉडी का ही एंगल चेंज हो जाया करता, एक पैर इधर एक पैर उधर, सिर्फ लॉक तक पहुंचना है बस। कभी कभी तो दोस्त भी गाइड करते थे, थोड़ा थोड़ा और लेफ्ट, थोड़ा यार टेढ़ा हो ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। जैसे जैसे गेट खुलता ऐसी फीलिंग आती थी जैसे कोई सीक्रेट ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया हो। 90s के बच्चे शॉर्टकट ढूंढते जरूर थे, लेकिन वो शॉर्टकट्स क्रिएटिविटी से इतने भरे होते थे कि क्या ही बात करें। कभी स्टिक से स्विच ऑन करना, कभी रूलर से डोर बंद करना, गेट के लॉक तक हाथ को पहुंचाना, ये तो ऑलमोस्ट हर कॉलोनी के बच्चे को आता था। आजकल के डोर्स है, ऑटोमेटिक है, वीडियो डोर बेल्स है, डिजिटल लॉक्स है, लेकिन तब एक छोटा सा आयरन गेट भी एडवेंचर बन जाता था। इसीलिए 90s का बचपन इतना मेमोरेबल था, हर रोज कोई ना कोई एक छोटा सा आनंद सामने होता था और हम उसका सोल्यूशन निकाल रहे होते थे, खुद इन्वेंट ही कर लेते थे, ज्यादा हमें लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। आई स्टिल नो अ हाउस, मेरी मासी का घर है, कजन मासी का घर है, जिनका वो जो है आयरन का गेट है, एंड दैट पर्टिकुलर साउंड ऑफ दैट जो एकदम आयरन के गेट की आती है जब आप कुंडी खोल रहे होते हैं, या इट दैट यूज्ड टू बी अ वेरी फेमिलियर साउंड, हमें लगता था कि हम मासी के घर में जा रहे हैं तो ये तो उनके घर की आवाज़ है। हाउ मेमोरीज आर एसोसिएटेड विद द साउंड एज वेल, इट्स ब्यूटिफुल एंड इट्स द ब्यूटिफुल 90s वी आर टॉकिंग अबाउट। या बस कुछ देर और, ज्यादा टाइम नहीं बचा है, घंटे खत्म होने वाले हैं यहाँ पे हमारे पास।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart योर पर्सनल ग्रोसर।
3: 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20, 10।
4: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
5: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है,
6: टाइम टू रेज द बार।
7: रम्मा
6: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
5: Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.
2: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
2: आया कैसे एकदम सही में यार, अच्छा टाइम ऐसे ही गुजरता है। फिर से रेडियो बस्ती 24/7 लाइव पर मस्ती 90s मिक्स टेप बिल्कुल चल रहा था यहाँ पर, और फिर 90s में थोड़ी देर के लिए वापस जाकर अच्छा लगता है यार, पूरा एकदम मूड रिफ्रेश हो जाता है। थोड़ी देर ही सही बट बहुत अच्छा एक फीलिंग आता है, जहाँ पर एक सीलिंग फैन का रेगुलेटर जो है वहाँ से लेकर बॉलीवुड के कॉलेज स्टूडेंट्स के पास बुक्स कम हुआ करते थे, स्टाइल ज़्यादा होता था, हीरो हीरोइन के मैचिंग कलर्स, यू नो आँखों से रोमांस करना, देन एक दूसरे से यू नो गेम स्पिरिट की खुशी बांटना, एंड यू नो वो कैरम की क्वीन का पॉकेट होना, कवर भूलते ही सारी खुशी हवा जो हो जाना, एक प्लास्टिक की बाल्टी रूम से लेकर टेरेस तक सब कुछ वो कवर ही करते हुए जा रहे हैं। हर डिपार्टमेंट की मैनेजर बनी हुई है वो हीरोइन के बाल में हवा जो है वो उसका उड़ना। आई थिंक 90s की सबसे बड़ी खूबसूरती ही यह थी कि उस वक्त ऑर्डिनरी चीज़ें भी इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगती थी। इफ यू सी कि हम इस शो पे जब भी मैं आती हूँ और बात करती हूँ, आई जस्ट पिक अप मोमेंट्स फ्रॉम द फ्रैगमेंट्स ऑफ द मेमोरीज आई हैव, एंड यू नो व्हेन वी आई टॉक टू अदर पीपल दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस, एंड देन आई पिक अप दोज फ्रैगमेंट्स एज वेल, एंड आई कीप ऑन क्रिएटिंग एंड टॉकिंग अबाउट दोज वेरी सिंपल थिंग्स। क्या है, मैं कुंडी खोलने की बात कर रही हूँ है ना, बट वाई डज इट साउंड सो रिलेटेबल कि जैसे ही मैं बात करूँ तो आपको वो साउंड आपको लगे कि अरे हाँ आई कैन हेयर दैट। जब बाल्टी की बात करो अचानक से आपको अपने घर की वो लाल बाल्टी याद आ जाए, है ना। सो वाई इट हैपन्स बिकॉज कहीं ना कहीं आर हार्ट इज स्टिल देयर, राइट, एंड व्हेनेवर दिस शो हैपन्स योर राइट इज हार्ट इज राइट हियर विद मी, है ना। अब ये हार्ट को थोड़ा सा संभाल के रखें क्योंकि अब हम अगला एपिसोड लेकर अगले हफ्ते हाजिर हो जाएंगे, सेम टाइम सेम प्लेस। तब तक के लिए यू हैव अ फैंटास्टिक डे अहेड, बाय बाय एंड टेक केयर।

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: एक बार फिर से एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत। नमस्कार, गेम जय सिंगापुर, सारू जय अखा सिंगापुर मारू जय, उसी शो में आपका एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूँ, वेलकम कर रहा हूँ, जिसका नाम है लेजेंड्स। और लेजेंड्स में आजकल चल रही है द अचीवर सीरीज। मैं हूँ आपका हम सफर समर। आज एक बार फिर से एक और हस्ती की बात करने के लिए मैं आ गया हूँ। आज आपको उनसे मिलवाऊंगा जिनको फादर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है, जिन्होंने पहला शिपयार्ड बनाया इंडिया में, पहली कार फैक्ट्री बनाई, और सच कहूं तो वास्तव में मेड इन इंडिया के समर्थक वही थे। वो जब भी बाहर जाया करते थे तो अपना सारा सामान इंडिया से ले जाया करते थे, इवन अपनी सारी टॉयलेटरीज भी, ताकि उन्हें विदेश का कुछ भी काम में ना लेना पड़े। आपको लग रहा होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, चलिए मैं आपको बताई देता हूँ। अच्छा, एक हिंट देता हूँ, कोशिश कीजिए कि आप भी उन्हें पहचान जाए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, कुछ तो आइडिया लगा हुआ आपको। चलिए एक और, हिंदुस्तान शिपयार्ड्स, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स। चलिए अब आपको क्या सताना, मैं बिना कोई वक्त गवाए आपको बता देता हूँ कि आज के हमारे जो लेजेंड है वो है इन सभी कंपनीज के फाउंडर, और उनका नाम है वालचंद हीराचंद दोषी। नाम तो शायद आपने सुना होगा, लेकिन मैं उनकी जिंदगी का एक सफर आपको करा लाऊंगा। आखिरकार मेरा काम भी तो यही है, आपको कहानी के सफर पर ले चलना। और अभी हम लेजेंड्स की सीरीज में उनकी बात कर रहे हैं जिनके अचीवमेंट्स ने हमें कुछ अचीव करने की ताकत दी, रास्ता दिखाया। तो शुरू करने से पहले एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के

0: Who says shopping can't take you places? At the 42nd Zaxxalon India Aadi special discount sale. Rent two tickets daily to dream destinations like Bangkok, Langkawi, Guangzhou and Ho Chi Minh City. But that's not all. Enjoy the Zaxxalon India Aadi special discount sale with amazing deals on fashion, jewelry, food, lifestyle products, plus live performances, competitions and family fun. Singapore Expo Hall 5A, 16th to 19th July, 10 a.m. to 10 p.m. And entry free. Free. Shop, win, travel. Only at Zaxxalon India Aadi special discount sale.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: कहानियाँ उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर एक बार फिर से कर रहा हूँ मैं आपका इस्तकबाल। स्वागत, मैं हूँ समर, आपका हम सफर। उस सफर पर जहाँ चलने पर हम जीने की राह पाते हैं, हौसला और हिम्मत उन्हीं से पाते हैं। आज हमारे साथ हैं वो जिनके लिए कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, उनकी जिंदगी पर जीत का राज विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उनकी जिद, अविश्वास पर विश्वास और घनघोर निराशा के बीच आशा है। हाँ जी, और ये कोई और नहीं वालचंद हीराचंद दोषी हैं, जिन्होंने रेलवे कॉन्ट्रैक्टर से एक एंटरप्रेन्योर का सफर तय किया, कॉटन का बिजनेस भी किया, पर अपनी राह समंदर और आसमान तक तय की। वालचंद जी ने भारत का पहला शिप बनाया जिसका नाम था SS लॉयल्टी। ये जहाज बॉम्बे से लंदन की ओर गया था और ये दिन था 5 अप्रैल, और इसी दिन को नेशनल मैरीटाइम डे के तौर पर मनाया जाता है। कमाल की बात है ना, हम हर किसी चीज को अगर इतिहास की घटनाओं से मिलाकर जोड़कर सुने तो शायद हमको बहुत ही अच्छे से वो याद रह जाएंगी। अब मैं आपको बताता हूँ इस दिन को याद रखने का तरीका। साल 1919 और अप्रैल का महीना भारत के इतिहास में ये बहुत खास था, नोटेबल। इस महीने में हुआ था जलियांवाला बाग कांड, बस तारीख जुदा है। 5 तारीख को भेजा गया था SS लॉयल्टी और 13 अप्रैल को हुआ जलियांवाला बाग गोलीकांड। एक तरफ देश इन चीजों से जूझ रहा था, दूसरी तरफ कुछ लोग बिना हारे बिना थके दुनिया भर में भारत का परचम लहराने की तैयारी कर रहे थे। यानी वही एक साल और वही एक महीना, एक सिक्के के लेकिन दो पहलू। वेल, आजादी जिस साल भारत को मिली उस साल यानी 1947 में वालचंद जी की कंपनी टॉप 10 कंपनीज में शुमार थी, और आज वालचंद नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड न्यूक्लियर इक्विपमेंट और डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और भी बहुत कुछ है बताने को, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। तो इस ब्रेक की है दरकार, इसके बाद एक बार फिर से हाजिर हो जाएगा समर आपके लिए सरकार। तो सुनते रहिए सिंगापुर और साउथ।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर अब सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
4: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये

0: करना है तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
1: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: हेलो जी, नमस्कार, आप सभी का स्वागत एक बार फिर से। आप सुन रहे हैं लेजेंड्स द अचीवर्स सीरीज। आज हमारे साथ हैं वालचंद इंडस्ट्रीज के फाउंडर वालचंद हीराचंद दोषी जी। उनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के सोलापुर में। एक जैन फैमिली में ये पैदा हुए। ये साल था 1882 का, 1882। माँ का नाम था राजू और पिता थे हीराचंद। एक व्यवसायी और एक साहूकार थे वो। हीराचंद जी के सबसे छोटे बेटे थे ये, यानी कि वालचंद जी। इससे पहले इनकी एक बड़ी बहन और दो भाई थे, लेकिन उनको जन्म देने के महज 15 दिन बाद उनकी माँ गुजर गई और इनकी परवरिश इनकी आंटी उमा ने की, जिनके कोई बच्चा नहीं था। बेसिकली ये लोग रहने वाले तो थे गुजरात के, लेकिन महाराष्ट्र में ही सेटल हो गए थे। हीराचंद जी यानी वालचंद के फादर अपने फादर की डेथ के बाद सोलापुर चले गए और खुद के बड़े भाई सखाराम जी से अलग हो गए। यहाँ आकर उन्होंने थोड़ा बहुत अंग्रेजी पढ़ना सीखा। अंग्रेजी सीखने की वजह थी कि वो टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार पढ़ना चाहते थे, जो उनके घर आया करता था, लेकिन वो पुराना अखबार भी पढ़ लिया करते थे। कहने का मतलब यही है कि वो अपडेटेड रहना चाहते थे। ये साल था 1880 का। फैमिली तब तक गुजरात ही रहा करती थी। वालचंद जी भी नहीं जन्मे थे, तो हीराचंद जी ने खुद को एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया और उनकी इंग्लिश ने बड़ी मदद की और उनको अपनी कॉटन मिल खोलने की एक एजेंसी मिल गई। बॉम्बे के बड़े मिल ओनर मुरारजी गोकुलदास जी की ही मिल थी ये। इससे इनका सोशल स्टेटस भी बढ़ गया और म्यूनिसिपल काउंसलर ये बन गए। ये वो साल था जब वालचंद जी का जन्म हुआ, यानी 1882। इसके आगे की कहानी हम जारी रखेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। आप सुन रही है लेजेंड्स के अचीवर सीरीज।

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
3: They were not chosen.
4: उसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे।
3: The newest chapter in the YRF spy universe.
5: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई।
3: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडियाज फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट।
6: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है।
3: बोर्न टू फाइट, बिल्ट टू सर्वाइव। अल्फा रिलीजिंग 3rd जुलाई आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट।

समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किस्से उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मैं लेजेंड्स के सफर पर। मेरा नाम है समर, आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। आज हमारे साथ एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वालचंद हीराचंद दोषी जी हैं, उनका सफरनामा है। हम फ्लैशबैक में थे और हम सफर तय कर रहे थे उस दौर का जब वालचंद जी का जन्म हुआ ही था और तब तक उनके पिता खुद को बॉम्बे में स्टैब्लिश करने में लगे हुए थे। उन्हें मिल्स की एजेंसी मिल गई थी। सोलापुर के बाद औरंगाबाद में भी इनको एक मिल की एजेंसी मिल गई एंड फाइनली ये बॉम्बे शिफ्ट हो गए और मनी लैंडिंग का काम करने लगे, साहूकार बन गए और तब इन्होंने सब बच्चों को भी अपने पास बुला लिया। वालचंद जी को स्कूल में दाखिला दिलवा दिया गया एल्फिंस्टन मिडिल स्कूल में, जो उस वक्त बॉम्बे का बड़ा स्कूल हुआ करता था। वालचंद जी कोई बहुत अच्छे या आदर्श स्टूडेंट नहीं थे, रादर वो तो बदमाश थे, बहुत ही शैतानी करते थे, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था उनका, अक्सर स्कूल बंक कर लिया करते थे। उनके टीचर ने भी वही स्ट्रेटेजी अपनाई जो अक्सर हर टीचर अपनाती हैं, उन्हें क्लास का मॉनिटर बना दिया। दिखते भी बड़े अच्छे खासे गदकाठी के थे, सो मॉनिटर बन गए। पर मॉनिटर बनने से उनके भीतर की लीडरशिप क्वालिटी और बढ़ने लगी, निखरने लगी। वो कुछ बुरी संगत में पड़ गए और हड़ताल वगैरह भी उन्होंने कर दी और रिंग लीडर बन गए। हालांकि उनको इस वजह से काफी प्रॉब्लम भी हुई, लेकिन तभी बॉम्बे में प्लेग फैल गया महामारी के रूप में। ये साल था 1896 का। कहते हैं ये प्लेग बहुत ही भयानक था और बड़ी संख्या में इसने लोगों को माइग्रेट करने पर मजबूर कर दिया। इवन उस दौर में होने वाले क्रिकेट प्रतियोगिताओं पर भी इसका असर हुआ था और वो भी बंद हो गई थी, क्योंकि शुरुआती दौर में बॉम्बे में ही इन प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ करता था। वेल, कहानी पर वापस आते हैं लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या गया?

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: ब्रेक के इस बार आपका स्वागत है रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। मैं हूं आपका हमराही, नाम है मेरा समर। आप सुन रहे हैं लेजेंड्स द अचीवर सीरीज। आज हम बात कर रहे हैं फादर ऑफ इंडियन ट्रांसपोर्टेशन की, यानी कि वालचंद हीराचंद दोषी जी की। हम थे बॉम्बे के प्लेग पर जी, कहानी वही थी। इस एपिडेमिक को देखते हुए बच्चों को हीराचंद जी ने सोलापुर शिफ्ट कर दिया, हीराचंद जी यानी वालचंद जी के फादर। और इस तरह वालचंद जी की आगे की स्कूलिंग सोलापुर में हुई और फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज बॉम्बे से उन्होंने आगे की पढ़ाई की, हायर स्टडीज की। इस बीच साल 1900 में उनको एक जीवन साथी मिल गया, उनकी शादी कर दी गई। शादी हुई सोलापुर के ही एक बैंकर की बेटी जीयू किलाचंद से। लेकिन फिर तकरीबन 7 साल बाद इनकी पत्नी की डेथ हो गई और घर वालों की जिद के चलते वालचंद जी ने दोबारा शादी कर ली। इस बार भी उनकी वाइफ जो बनी वो भी बैंकर की बेटी थी, कस्तूर मेहता इनका नाम था। इनके 2 बच्चे हुए लेकिन दोनों ही नहीं रहे। लेकिन तब भी वालचंद ने कस्तूर मेहता को हमेशा प्यार किया और वो उन्हें अपना लेडी लक कहा करते थे। अच्छा, जब वो सेंट जेवियर्स में पढ़ रहे थे तब उनको हीराचंद जी ने बॉम्बे से पूना शिफ्ट कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि प्लेग का कुछ भी असर उन पर पड़े, क्योंकि उनके 2 बड़े भाई प्लेग का शिकार हो गए थे। लेकिन उनका मन नहीं लगा पढ़ाई में, उन्हें लगा उनके पिता अकेले पड़ गए हैं तो बड़े विचलित रहते थे वो। अब क्या किया उन्होंने, इसके आगे का सफर हम तय करें।

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। लेजेंड्स में आज हम बात कर रहे हैं वालचंद इंडस्ट्रीज के फाउंडर वालचंद हीराचंद दोषी जी की। वालचंद जी ने अपने भाइयों के प्लेग में गुजर जाने के बाद अपने पिता का साथ देने की सोची और उनका बिजनेस संभालने का जिम्मा उठा लिया। हीराचंद जी ने उन्हें सोलापुर मिल्स की जिम्मेदारी सौंपनी चाही, पर उन्होंने मना कर दिया। उन्हें कॉटन ट्रेडिंग में नहीं जाना था, लिहाजा उनके पिताजी ने उन्हें भेजा मोहाल, जहां मंडी में उन्हें ज्वार का व्यवसाय करना था। अब कोई अनुभव तो था नहीं, तो वो इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि बड़े बड़े ट्रेडर्स थे वहां तो साहब। लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम किया और वो था कि उन्होंने मनी लेंडिंग की वहां पर। उससे थोड़ा बहुत उन्होंने कमा लिया, यानी बिजनेसमैन कुछ ना कुछ करके कमा ही लेता है। इसके बाद सोलापुर में भी उन्होंने कॉटन मिल में हाथ आजमाया और अपने पिताजी के मना करने के बावजूद भी अपने अंकल सखाराम को पैसे दे दिए, और आखिरकार यहां भी उनको नुकसान हुआ, और ये नुकसान ज्वार बिजनेस से भी ज्यादा था। लेकिन हीराचंद जी को यह एहसास हो गया था कि वालचंद जी को बिजनेस सिखाना पड़ेगा। उन्होंने अपने एक रिलेटिव सेठ लाड़ा जी मुंद्रा जी के पास बिजनेस सीखने इन्हें भेज दिया। वहां इन्होंने बहुत कुछ सीखा। लाड़ा जी ने वालचंद जी को अपने की पर्सन से मिलवाया, क्योंकि वो खुद भी हीराचंद जी के अंडर में ही काम कर रहे थे। वेल, यहां पर कुछ ऐसा एहसास वालचंद जी को हुआ कि उन्हें खानदानी परिपाटी पर चलते जाने के बजाय नई राह ढूंढनी चाहिए। चाचा और पिता की मना करने के बावजूद उस नई राह पर वो चल पड़े। वो राह क्या थी मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि जो भी कुछ अलग करता है वो अपने लिए सफलता के नए द्वार खोलता है यकीनन। तो चलिए फिलहाल एक ब्रेक की राह।

0: Who says shopping can't take you places? At the 42nd Zaxxalon India Aadi Special Discount Sale. Rent two tickets daily to dream destinations like Bangkok, Langkawi, Guangzhou and Ho Chi Minh City. But that's not all. Enjoy the Zaxxalon India Aadi Special Discount Sale with amazing deals on fashion, jewelry, food, lifestyle products, plus live performances, competitions and family fun. Singapore Expo Hall 5A, 16th to 19th July, 10 a.m. to 10 p.m. And entry free. Free. Shop, win, travel. Only at Zaxxalon India Aadi Special Discount Sale. They were not chosen.
1: They were created. Uski maa ka naam Jaan ki tha. Hum ise Sita bulavenge.
2: Alpha.
0: The newest chapter in the YRF spy universe.
3: Par is baar Sita aaj Lanka khud chalane aayi.
0: Alia Bhatt and Sharwari in India's first female-led action spectacle, where every decision could be their last.
4: Alpha program uska junoon hai.
0: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island-wide at the cinemas near you. Brought to you by Home Screen Entertainment.
5: कहानियाँ उनकी जिनके होने से हम हैं. सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर.
6: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है. कहानी में आप लौट आए हैं. चलिए सफर को कंटिन्यू करते हैं. रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आज वालचंद हीराचंद दोषी जी की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ. मैंने आपको बताया कि लाड़ा राम जी के साथ वालचंद जी बिजनेस सीख रहे थे. दोनों अलग अलग जगह जाते और वहाँ की मंडियों में बिजनेस देखते. अंग्रेजों का जमाना था. ट्रेन की यात्रा का ये हाल था कि उन दिनों चाहे कोई कितना भी बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, उनको थर्ड क्लास में ही ट्रेवल करना पड़ता था, क्योंकि सबकी एक ही कैटेगरी थी, इंडियन. वालचंद जी ने यह सब देखा तो बड़े दुखी हो गए. ऐसे ही एक ट्रेन की यात्रा उन्होंने की थी. वेल, एक दफा तालीकोट से दोनों लौट रहे थे, लाडाराम जी और वालचंद जी. ट्रेन निकल चुकी थी जो मंडी से खरीदे हुए गुड़ यानी जैगरी के कार्ड्स को लेकर जाती थी. इसके बाद लाडाराम जी ने प्राइवेट बैलगाड़ी भी बुक नहीं की, क्योंकि उन्हें लगा पैसे लगेंगे, या वो ये चाहते थे कि वालचंद जी देखें कि कैसा हार्डवर्क करना होता है कुछ बनने के लिए. तो वो उन्हें पैदल ही ले गए. रात भर वो लोग पैदल चलते रहे कच्ची राह पर, और सुबह जब पहुंचे तो वालचंद जी वहीं गुड़ की बोरियों पर सो गए. मंडी में भी उन्होंने देखा कि किस तरह से बस काम कर रहे हैं, घर से दूर हैं, वहीं रहते हैं, सुबह उठकर अपना खाना बनाते हैं, दुकान सजाते हैं. कितना मुश्किल होता है, घर वालों से कॉन्टेक्ट का कोई जरिया ही नहीं. ये देखकर वो निराश हो गए. उन्हें लगा कि कुछ और करना चाहिए, और तब उन्होंने कुछ और करने की सोची. क्या था वो कुछ और, मैं बताऊंगा आपको एक ब्रेक के उस पार.

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी।
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
4: मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
5: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। आप हैं समर के साथ लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में। आज हम बात कर रहे हैं वालचंद हीराचंद दोषी जी की। कहानी का वही सिरा अगर पकड़े जहां हम इसे छोड़कर गए थे, तो मुझे याद आता है वो पल जब वालचंद जी महज 21 साल के थे और समझ गए थे कि अब नहीं हो सकता है काम। मंडी में दिन रात एक कर देना, रात को डिम लाइट में बैठकर दिन भर का हिसाब किताब। और तब उनको याद आया कि उनके सोलापुर में गुजारे दिनों में उन्हें एक साथी मिला था जिसे उन्होंने बड़े ही अच्छे इंटरेस्ट पर लोन दिया था और वो उस वक्त के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम थी। एंड वो फॉर्मूला तो आपने सुना ही होगा, आई नो अ गाय हु नोज अ गाय। तो इन्हीं शख्स ने इन्हें एक ऐसे शख्स से मिलवाया जिन्होंने इनकी लाइफ बदल दी और वो थे लक्ष्मण राव बलवंत फाटक। ये शख्स रेलवे कॉन्ट्रैक्टर थे। इन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई। ये साल था साहब 1903 और यही फाटक साहब आगे चलकर हिंदुस्तान फिल्म कंपनी के ओनर भी बने और दादा साहब फाल्के इनके पार्टनर थे। वेल, फाटक साहब रेलवे में थे और जब इनको इस बात का मालूम हुआ कि रेलवे महाराष्ट्र में एक 7 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनाने वाला है येदासी से तड़वाल तक का, लेकिन इतने पैसे फाटक साहब के पास नहीं थे, इसलिए उन्होंने मुलाकात की यंग मनी लेंडर वालचंद जी से। वालचंद जी को ये विचार अच्छा लगा और वो भी यही काम करना चाहते थे। उनके चाचा और उनके पिताजी ने उन्हें सख्त मना कर दिया, लेकिन बहुत ज्यादा जिद करने पर उनको बात माननी पड़ी और उनको इस शर्त पर पिताजी ने पैसे दिए कि इसमें जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से आधा तुम्हें देना होगा। और फाइनली ये पहला कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिल गया। वालचंद जी ने बहुत मेहनत की। वो हमेशा साइट पर रहते थे, हर मजदूर का काम देखते थे, सीखते थे, सिखाते थे, पूरे 7 मील का दौरा करते। अच्छा, इस काम के लिए उन्होंने एक छोटा घोड़ा भी खरीद लिया था जिसका नाम रखा ड्वार्फी। नैरो गेज की रेलवे लाइन बिछ गई, लेकिन ड्वार्फी उनके साथ लंबे वक्त तक रही और यहां से उनकी रेलवे कॉन्ट्रैक्टर बनने की कहानी शुरू हुई। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। 7 मील का लंबा सफर तय करके हम थक गए ना, और सफर तो अभी जारी है और हमारे पास तो ड्वार्फी भी नहीं है।

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप। जोश में
3: Who says shopping can't take you places? At the 42nd Zaxxalon India Adi Special Discount Sale. Rent two tickets daily to dream destinations like Bangkok, Langkawi, Guangzhou and Ho Chi Minh City. But that's not all. Enjoy the Zaxxalon India Adi Special Discount Sale with amazing deals on fashion, jewelry, food, lifestyle products, plus live performances, competitions and family fun. Singapore Expo Hall 5A, 16th to 19th July, 10 a.m. to 10 p.m. And entry free. Shop, win, travel. Only at Zaxxalon India Adi Special Discount Sale.
4: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किस्से उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने। ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
5: वेलकम बैक लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में। आज हम बात कर रहे हैं वालचंद हीराचंद दोषी जी की और मैं हूं समर आपके साथ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। रेलवे लाइंस का कॉन्ट्रैक्ट एक पूरा नहीं हुआ कि उन्हें दूसरा मिल गया। पहली की फिनिशिंग का काम फाटक जी को सौंपकर वालचंद जी बॉम्बे चले गए। इसके बाद तो एक के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहे। उन दिनों ब्रिटिश लोग इंडिया में रेलवे का तेजी से विस्तार करने में लगे हुए थे। वो पैसे कम देना चाहते थे और काम बहुत जल्दी चाहते थे। ऐसे में उनकी सारी जरूरतों के मुताबिक उनके पैमाने पर जो सबसे फिट बैठता था वो थे वालचंद जी। सबसे बड़ी बात थी उनकी इंटेलिजेंस, उनका बिजनेस माइंड। उन्होंने बड़ी चतुराई से काम किया और काम भी वक्त पर किया और प्रॉफिट भी कमा लिया। सबका जिक्र कर पाना तो यहाँ मुश्किल है क्योंकि वो जिस तरह से सारे अरेंजमेंट करते थे, मैनेज करते थे, वो कमाल होता था। वेल, इसके बाद उन्होंने यही काम जारी रखा जब तक कि उनकी फाटक जी के साथ पार्टनरशिप चलती रही। और फिर एक रोज उनकी मुलाकात मिस्टर वॉटसन से हुई और यहाँ से एसएस लॉयल्टी का सफर शुरू हुआ। हाँ जी, इस जहाज के बारे में मैंने आपको बताया ही था ना। उन दिनों इंग्लैंड तक स्टीमर्स की काफी कमी थी तो इस मौके को भुना लिया हमारे आज के लेजेंड ने, यानी कि वालचंद जी ने। उनके पिताजी हमेशा डरते थे कि ये कहीं गलत तो नहीं जा रहा है, पर फिर उन्होंने हर बार अपने पिताजी को गलत साबित किया और जो भी राह पकड़ी उस पर अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ते रहे। माइनिंग में उन्होंने हाथ डाला, शिपिंग इंडस्ट्री में भी उनका बोलबाला रहा और रोड कंस्ट्रक्शन में भी वो आगे आए। और एक और उपलब्धि जिसे भूला नहीं जा सकता है वो है भोरघाट्स। भोरघाट्स बॉम्बे से पूना के बीच में बनाई गई टनल्स हैं जहां से ट्रेन्स गुजरती हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा एक ब्रेक के बाद।

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर एक बार फिर से हाजिर हो गया लेकर आ

का लेजेंड्स और आज आखिरी मुलाकात में आपका कर रहा हूँ मैं एक बार फिर से स्वागत। खंडाला से करजत के बीच स्थित भोर घाट टनल्स नहीं होती तो यात्रा उतनी आसान कहाँ होती, लेकिन इसे आसान बनाने का काम किया हमारे आज के लेजेंड ने, जी वालचंद हीराचंद दोषी जी ने। वालचंद जी ने काफी वक्त तक टाटास के साथ भी काम किया एक साथ पार्टनरशिप में, मगर जब लंदन फाउंडेशन सोसाइटी ने इन पहाड़ियों के बीच टनल बनाने की सोची और उसके लिए टेंडर निकाला तो वालचंद जी अकेले इस मैदान में कूद पड़े। उन्होंने ये देखने के लिए अंडरग्राउंड रेलवे कैसे बनता है लंदन जाने की सोची। वहां जाकर वो दंग रह गए, ये बहुत मुश्किल लगा उनको। उनको लगा उनके इंजीनियर शिवचंद्र बनर्जी ये काम नहीं कर पाएंगे, जबकि वो इंडिया में उनके सारे फर्स्ट क्लास ऑपरेशंस हैंडल करते थे। उन्होंने इंडिया लौट कर ब्रिटिशर्स को कह दिया आप ये काम टाटास को दे दीजिए, वो लोग कर लेंगे। लेकिन बात वही है, जिस रेट में टाटास ये काम करते उसकी आधी में वालचंद जी करने वाले थे, लिहाजा ब्रिटिशर्स की पहली पसंद वालचंद जी थे। अब वालचंद जी ने प्लानिंग शुरू की। उन्होंने लंदन से एक बड़े इंजीनियर को बुला लिया, उनका नाम था जे पॉलॉक। अच्छा मशीनरी का क्या करते, तो मशीनरी टाटास से किराए पर ले ली, उसका रेंट दिया गया। उनको पता भी नहीं था कि ये किसलिए ली गई हैं। वेल और भी बहुत सारे जुगाड़ लगाए गए और नतीजा भोर घाट्स, यानी रास्ता आसान, आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता आसान। और यही तो हमारे लेजेंड्स करते हैं, इसीलिए तो वो लेजेंड्स कहलाते हैं। टनसा लेक से मुंबई में बड़ी बड़ी पाइपलाइंस के जरिए पानी पहुंचाने का काम हो, जाने कितने ही अनगिनत रेलवे ब्रिजेस हो, हिंदुस्तान शिपयार्ड हो या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, सिर्फ एक ही नाम वालचंद हीराचंद दोषी। उनकी कहानी बहुत लंबी है, लेकिन जितनी मैं सुना सकता था आपको सुना दी। इस वक्त में आपसे फिर से मुलाकात करूंगा एक और शख्सियत के साथ, या कभी वक्त मिला तो इन्हीं की कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो आप जाना होगा और जाने के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। इजाजत दे दीजिएगा लेकिन साथ में कुछ वादे भी करते जाइएगा। कहिए कि आप रखेंगे अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।
2: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड। मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है, यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Masti Madness on Radio Masti 24/7.
2: Download Radio Masti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
3: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a Masti Bhara weekend.

0: फाइनल है, कभी आई लव यू नहीं बोलना है, राइट?
1: राइट.
0: कूल. वैसे नेवर से आई लव यू को फ्रेंच में कैसे बोलते हैं?
1: नदी जमेश
0: नदी जमेश. सो सेक्सी.

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट
3: Perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

0: मेरा पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लू, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
2: Perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ।
3: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
3: The best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत, ये मिलता है, यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Masti Madness on Radio Masti 24/7.
2: Download Radio Masti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: और झुमका। मस्ती मैडनेस और यहाँ पर झुमकों की बात हो रही है, सुबह सुबह ठुमकों की बात हो रही है और साथ ही साथ में होगी हमारे मस्ती भरे फ्राइडे की बात। जी हाँ, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगेन। कहाँ पर है हम? रेडियो मस्ती 24/7 पर।
1: बिल्कुल
0: जी।
2: और कहीं कोई जाता है 105 बच्चे।
3: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
0: रेडियो मस्ती 24/7 पर। जी हाँ, थ्रू रेनुका एंड येट अनदर एडिशन ऑफ दिस अमेजिंग शो जिसको हम कहते हैं नो फिल्टर मस्ती मैडनेस। और अंतरा देख रही है कि मैं उसको कब बारी दूंगी बोलने की।
1: मैं तो अपनी लाइन तैयार करके एकदम बैठी हुई थी, रेडी के रेडी, कि रेणुका बहुत देर से दबा रहे थे लेकिन वो चल नहीं रहा था। पता नहीं क्या कर रही थी रेणुका। बहुत यूजुअली जब रेणुका दबाते हैं तो चल पड़ती है।
0: अब यही तो बात है कि जिंदगी में धीरे धीरे हमारा जो इम्पैक्ट है ना वो कम होता चला जा रहा होता है और इसीलिए दबाने से भी बहुत कुछ नहीं दबता। डार्लिंग आ जाओ, शुरू करें मस्ती मैडनेस यहाँ पर। एंड ऑफ कोर्स वी हैव गॉट वन गाना आफ्टर द अदर, टोटली अमेजिंग सॉन्ग्स लाइंड अप अपार्ट फ्रॉम द खबरें, ठीक है ना? क्योंकि जल्दी से इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद आकर अंतरा मैं बताऊंगी कि लहसुन मतलब कि गार्लिक से शादी का डेकोर कैसे हो सकता है। वाह वाह, लेट्स गो ग्रीन। यस, गुड मॉर्निंग।
4: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
5: Hit down.

0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
1: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
2: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: Yo, boys, I am singing song. Soup song.

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: भाई दो दो डार्लिंग्स यहाँ पर आ चुके हैं आपके फ्राइडे को और भी ज्यादा मजेदार मसालेदार बनाने के लिए. यस, गुड मॉर्निंग. ये है मस्ती मैडनेस. मैं हूँ अंतरा, साथ में रेनुका. मस्ती मैडनेस जहाँ न्यूज भी होती है.
2: गैस्ट्रोनॉमिक. जी हाँ, बिल्कुल, न्यूज के लिए आप पहुंच चुके हैं सही जगह. दिस इज मस्ती मैडनेस. और मस्ती मैडनेस में इस टाइम पर मुझे लगता है कि गैस तो एक तरफ है पर स्मेल दूसरी तरफ है. मतलब आप सोचिए, चाइनीज सुपर मॉडल की शादी हो रही है, ठीक है अंतरा, और साथ ही में इट्स अ फ्रेंच शटो एंड वहां पर इंटरनेट इज बजिंग कि भाई डिटेल्स देखिए शादी की. मतलब किस तरह से बल्ब्स ऑफ गार्लिक एंड गार्लिक ग्रीन्स लैविश फ्लोरल्स के साथ में रखे गए हैं इसको. मतलब ये जो पूरा सेरेमनी थी, इट वाज हेल्ड एट द मोस्ट सेम हॉ. मतलब बोलना भी नहीं आता मुझे बेसिकली. आप अगर उसका डेकोर देखें तो आपको लगेगा वाह. लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि सिंबोलिज्म था वहां पर, जहां पर ऐसे अलग अलग तरह के फूल जिनके नाम भी हमने नहीं सुने हैं वो वाले लगे हुए थे. वहीं बीच में गार्लिक्स, गार्लिक का जो वो बल्ब्स होते हैं ना, बेसिकली लहसुन के जो पूरे के पूरे गुच्छे होते हैं, वो फूलों के बीच में ही सजाए हुए थे. तो आप सोच सकते हो कि हाँ, तो हमें लगा पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन सुना है कि चाइनीज कल्चर में अनपील्ड बल्ब्स ऑफ गार्लिक, दे टॉक अबाउट हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी एंड अ लॉट मोर. और हमारे घरों में अगर लहसुन से सजा दी शादियां, तो आई एम नॉट टू श्योर हाउ पीपल विल रिएक्ट. व्हाट इज योर व्यू अबाउट इट?
3: एक तो माय नोज डजंट काइंड ऑफ अग्री टू व्हाटएवर दे हैव डन. मतलब प्लीज डू नॉट मिक्स दीज टू. ओके, तुम्हें अगर पूरा कल्चर करना था तो तुम इसको कुछ और भी कर ही सकते थे, बट देन ओके, व्हाटएवर यू हैव डन डन. अनदर थिंग, मी लॉर्ड, मतलब कुछ भी लगा के उसको मीनिंग देने का, ये जो ट्रेंड चला हुआ है कि ये लगा दिया, अब हमने इसको सिंबॉलिक भी कर दिया, इसीलिए किया जाता है. इट्स द सेम थिंग. कोई मेरे टैटू के बारे में पूछता, मैं हर किसी को अलग बताता.
2: एग्जैक्टली माय पॉइंट. जी बिल्कुल. तो अब ऐसा है कि आपने गलती तो कर दी, अब उसको कवर अप कैसे करना है. तो चलो ठीक है, बट इट्स एक्चुअली ब्लेंडिंग वेरी वेल. मैं ये भी देख के हैरान हो रही हूँ. आप भी सर्च करो गार्लिक वेडिंग और ऑफकोर्स ही
3: स्मेल. सोच रहे हो पियोनीज के बीच में गार्लिक की स्मेल, वो एकदम लसन वाली स्मेल आ रही है. मतलब कैन यू, आई कैन नॉट, डू नॉट वॉन्ट टू इमेजिन.

0: hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 पर. जी हाँ, एक ही बात चल रही है और उस बात का नाम है मस्ती मैडनेस. आप हैं कि नहीं है यहाँ पर?
3: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7.
4: भाई, मेरी ये पुकार एंड गुहार टू ऑल दोस पीपल हु आर यू नो हु हैज देयर दिस पर्टिकुलर लाइफस्टाइल है उनकी, ठीक है, कि हम एक पर्टिकुलर डाइट फॉलो करते हैं. वेरी गुड, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, बट डोंट ट्राई एंड इम्पोज दैट ऑन अदर्स कि यही तुम्हारी जिंदगी का एक ही सत्य होना चाहिए कि तुम अब ऐसा हो जाओ जैसा मैं हूँ. डू नॉट डू दैट, इट्स सो इरिटेटिंग.
2: भाई बहुत बहुत गहरी बात बोल गई है अंतरा. मैं समझना चाहती हूँ कि ये गहराई कहाँ से आ रही है, बताइए पूरी खबर, बताइए खुल के बताइए. जी
4: हाँ जी, गहराई इसलिए आ रही है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स लाइक दे फोर्स यू टू डू सो. ठीक है, मेरे को भी पता है कि क्या चीज करना है नहीं करना है. हर कोई अपने अपने पेस पे कुछ ना कुछ कर रहा है, उसको मतलब गर्दन पकड़ के ये मत बताओ. बट वेल, ब्रायन जॉनसन का नाम हम सभी ने सुना हुआ है, सुना है राइट?
2: जी.
4: उनके ये वो बिलियनियर है जिन्होंने बहुत सारा कुछ किया हुआ है, अपने बेटे का ब्लड अपने अंदर इंजेक्ट किया हुआ है क्योंकि इनको फॉरएवर यंग जो है इतना है. एंड ही कीप्स ऑन टेलिंग पीपल आल्सो कि भाई दिस इज द वे ऑफ लाइफ, तुम लोग नहीं जियोगे, मैं तो ऐसे जीता रहूंगा, हमेशा जवान दिखूंगा एंड ऑल दोस थिंग्स. डू यू नो व्हाट्स द लेटेस्ट अपडेट ऑन हिम? ही हैज गॉट दिस ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है, जो कि इतना every day he is getting health checkup, उसमें पकड़ा नहीं गया, where his stomach is eating itself. And it's incurable, इसका कोई क्योर नहीं है. स्टमक की लाइनिंग को अटैक करता है ये ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस, इट्स अ कंडीशन. एंड या एआई कोशिश कर रहा है इसका कुछ सोल्यूशन निकालने का, लेकिन अभी कुछ इसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा है. सो क्या हो गया इतना सब कुछ करके भी?
2: कुछ नहीं, जिंदगी में क्या लिखा है वो तो बस लिखा ही है ना, आप कुछ भी कर लोगे. इतना संजीदा सवाल उठाया तुमने, मतलब
4: मेरा सवाल इसलिए था कि ज्ञान देना बंद करो
2: इसीलिए मैं चुप ही रही. मैंने कहा कुछ भी बोलूंगी तो यही मुझे घूर के देख के बोलेगी ये भी शुरू हो गई

0: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: जिंदगी में एक सवाल आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है या फिर हर जगह पूछा जा रहा है, वो ये है कि क्या औरतें इतनी सक्सेसफुल और इंडिपेंडेंट हो गई हैं दैट नाउ थिंग्स आर गेटिंग मोर चैलेंजिंग इन लाइफ बिकॉज ऑफ दैट रीजन.
2: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो. दिस इज मस्ती मैडनेस.
1: क्यों अंतरा,
3: सोचो फिर कितनी ऐश की जिंदगी जी होगी तुमने अब तक, जो तुम्हें अब लग रहा है कि हमारे जिंदगी में चैलेंज वापस आ गया है.
1: रेडियो मस्ती 24/7 पर. वेल, ऑल आई कैन से इज दैट एक मैच मेकर का कैंडिड अकाउंट ऑफ अ कॉन्वर्सेशन विद अ सक्सेसफुल इंडियन वुमन लिविंग इन सिंगापुर, जी हाँ, काफी वायरल हो गया है सोशल मीडिया पर. और उसकी वजह से डेटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं और मैरिज एक्सपेक्टेशंस जो हैं और चैलेंजेस जो हैं विच आर फेस्ड बाय हाई अचीविंग प्रोफेशनल्स, ये सब पहुंच चुका है एट द सेंटर ऑफ डिस्कशन. तो अब हुआ कुछ ऐसा कि एक इंडियन लड़की जो कि सिंगापुर में लीगल काउंसिल है, वो 2 करोड़ रुपए एनुअली कमाती है. ठीक है, लॉयर है सिंगापुर में. ये सैलरीज फॉर लॉयर्स आर नॉट अनहर्ड ऑफ. नाउ द थिंग इज दैट शी इज 39 एंड शी इज ओपन माइंडेड इन हर सर्च फॉर अ लाइफ पार्टनर, क्योंकि 12 साल से उसके माँ बाप उसके लिए एक लड़का ढूंढ रहे हैं और वो बिल्कुल फेल हो चुके हैं. अब उसने रिलीज करी एक स्टेटमेंट, एक पोस्ट जिसमें कि उसने कहा कि भाई जिसको मैं ढूंढ रही हूँ वो एक तो 42 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है, आई एम 39, ही कैनॉट बी मोर देन 42. सेकेंडली, ही मस्ट अर्न एज मच एज आई एम. ठीक है, देन ही शुड नॉट बी मैरिड, नॉर्थ इंडियन होना चाहिए और सिंगापुर में होना चाहिए. मेरे को तो इसी बात पे इतनी जोर से हंसी आई. मतलब मैडम 42 ईयर ओल्ड, नॉर्थ इंडियन, सिंगापुर में, जो कमा रहा है 2 करोड़ से ज्यादा, तो तुझे लगता है बहन की वो तेरे लिए बैठा हुआ अब तक?
4: हेलो, तू फ्लोर पे जब है आई येलो.
3: क्या ही बोलूं, मतलब दो जब तक आपने ये बात के वाले लास्ट 2 पॉइंट्स बोले नहीं थे ना, तब तक मैं इस बंदी के साथ थी कि भाई ठीक है, कमा रही है, बोल ही सकती है, ये सारी चीजें
1: जी.
3: बट लास्ट 2 पॉइंट्स आते हुए कहा दीदी, दीदी कम ऑन, दीदी कम बैक टू रियलिटी, दीदी
1: आप बैठो, अभी 12 ही साल हुए मम्मी डैडी को, कोई नहीं, 12 साल आप भी लगा लो. आएगा

0: They were not chosen. They were created.
1: उसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे.
2: Alpha. The newest chapter in the YRF spy universe.
3: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई.
2: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडिया फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट.
4: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है.
2: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island wide at the cinemas near you. Brought to you by Home Screen Entertainment.

0: हायरार्की माँ नाम की जो है एक चीज होती है, फॉलो करनी चाहिए उसको, फॉलो।
1: मस्ती मैडनेस जहाँ न्यूज भी होती है। जी बिल्कुल, हायरार्की को फॉलो करती हुई यहाँ पर बहुत ही डिसिप्लिन्ड साउंड करती हुई ऑन अ फ्राइडे। इसको पता है ना, फ्राइडे को थोड़ी देर डिसिप्लिन्ड साउंड कर लो, उसके बाद तो घर ही जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐश और दो दिन गायब। रेडियो मस्ती 24/7 पर अंतरा मुस्कुरा रही है मंद मंद।
0: खुशी तो देखो, मतलब फ्राइडे के मतलब जो स्माइल आई है बोलने के बाद रेणुका के खुद पर्सनली एकदम अंदर से ग्लो जो आ रहा है। बस वेल भाई, हायरार्की की बात इसलिए हो रही है कि क्या होता है कि जब आप बॉस बनते हो फिर आपको लगता है कि ये काम इसको दे दो, फिर वो अपना खुद बॉस बन रहा होता है, फिर उसको लगता है कि मैं किसी और को काम दे दूं। तो कुछ ऐसा हो गया, हमारे एक बिजनेसमैन साहब, उन्होंने हायर किया एक हिटमैन टू किल दिस मैन हु वाज ट्राइंग टू सू हिम।
1: ओके,
0: ठीक है। नाउ दिस हिटमैन जिसको हायर किया था उसने डेलीगेट कर दिया कि आई विल हायर अ चीपर वन।
1: ओके,
0: और उस बंदे ने भी कर लिया एक और हायर जो चीपर वन। तो ये प्रोसेस चार बार चला, चीपर।
1: हाँ।
0: तो जो जॉब $282,000 में शुरू हुआ था वो $4,000 के में आके बाय द टाइम इट केम टू द फिफ्थ हिटमैन चीपर करते हुए ये तो हुआ, फिफ्थ हिटमैन तक आया, बट अल्टीमेटली नन ऑफ देम डिड द जॉब। फिफ्थ हिटमैन के पास जाकर भी उसने कहा कि बहुत कम पैसे, इतने में तो मैं करूंगा ही नहीं।
1: सो बेसिकली काम नहीं हुआ, ये आउटसोर्सिंग की वजह से,
0: काम हुआ नहीं।
1: मैं कहती हूँ ये आउटसोर्सिंग ने इतना टंटा लगाया है कि एक आदमी कॉन्ट्रैक्ट लेता है, सब कॉन्ट्रैक्टर आता है, सब कॉन्ट्रैक्टर और
0: हाँ, फिर क्योंकि सबको चाहिए कि कम पैसे में हो जाए, ज्यादा पैसे हमारे पास रुक जाए
1: घर बैठे बैठे। हमें भी तो यही चाहिए। रेडियो मस्ती 24/7 पर फ्री का सुन रहे हो आप, वैसे देख रहे हो ना, फ्री का सुन रहे हो।

0: तो आइए हम 8 बजने के उस पार आपको एक इंटरव्यू में लेकर चलते हैं रेडियो मस्ती 24/7 पर। तैयार है आप टाइम से पहुंच जाना?
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो, दिस इज मस्ती मैडनेस।
2: सूटेड बूटेड इंटरव्यू के लिए जी बिल्कुल तैयार है हम। बताए मस्ती मैडनेस पे कौन सा इंटरव्यू किधर देना है?
0: तो भाई ऐसा है कि बेंगलुरु चलेंगे हम, ठीक है, और एक बढ़िया सा इंटरव्यू देंगे वहाँ पर। एक जॉब इंटरव्यू जिसको हमेशा याद किया जाता है कि भाई इसमें ऐसे सवाल पूछे गए थे या ऐसा रोल था या फिर मतलब पैसे इतने मिल रहे हैं उससे, राइट? सो एक बेंगलुरु का एंटरप्रेन्योर शिखर सक्सेना, वेल एक इंटरव्यू दैट ही ऑलवेज विल रिमेम्बर एंड रिमेम्बर्ड इज फॉर अ वेरी डिफरेंट रीजन। जो फाउंडर था उस कंपनी का, वो 40 मिनट लेट आया फॉर द स्केड्यूल्ड मीटिंग एंड कभी उसने आके एक बार मुंह से सॉरी भी नहीं बोला कि भाई सॉरी टू कीप यू वेटिंग, 40 मिनट इज नॉट अ छोटा टाइम, राइट? सो उसने कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं, कोई अपोलॉजी नहीं, सिंगल इंटरेक्शन ऐसा हुआ एंड दैट वॉज गुड इनफ फॉर दिस गाय टू नो कि भैया यहाँ काम नहीं करना है। अब उसके बाद ऑफ कोर्स ऑनलाइन जब ऐसी चीज डाल दो तुम तो बड़े सारे लोग कमेंट करने लगते हैं, लेकिन ये भी पता लगा बाद में कि भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर और जो लीडर की वैल्यू है वो पता लगता है बाय द टाइम। ठीक है तुम लेट हो सकते हो बट व्हेन यू अराइव देन यू डोंट इवन अपोलोजाइज स्पीक्स अ लॉट अबाउट योर एटीट्यूड।
2: बाप रे बाप, ये तो बड़ी सिंसियर बात हो गई, बट बात तो सही है ना? बनता तो है एकदम। आई एम विद हिम ऑल दैट। जितना हक आई थिंक एम्प्लॉयर को बनता है, ये बेसिक हक तो एम्प्लॉय जो भी लाइक पोटेंशियल एम्प्लॉय को भी मिलना चाहिए कि भाई मेरे कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। है तो है,
0: एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक वर्क प्लेस का जो कल्चर है, जो एथिक्स है, वो यही चीजों से डिसाइड होता है। आफ्टर ऑल यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल। उफ, नॉट अपोलोजाइजिंग इज अ ह्यूज रेड फ्लैग। सॉरी नहीं बोले ना कोई भी अंसरा कभी भी।
2: जी
0: चलो जाना बोल, ठीक है बाहर में जाओ।
3: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: तरीके आ रहे मार्केट में, तरीके तरह तरह के तरीके, कौन से वाले बताते बताते हैं, रुक जाओ थम जाओ थोड़ा।
2: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
3: रेडियो मस्ती 24/7 पर, जी हाँ, हम और आप मिल रहे हैं इस शो पर। इसका नाम है मस्ती मैडनेस। इतने शोज कर लिए कि हम ना हम शो का नाम ही भूल जाते हैं। यही तो शो है जहाँ पर इधर उधर की सारी बातें हम कर सकते हैं द वे वी वॉन्ट। राइट अंतरा, तो क्या खबर है तुम्हारे पास?
4: खबर कुछ ऐसी है कि पता नहीं ये वाले मार्केट में क्या ही चल रहा है, बट देन वेल लेट अस वेलकम दिस वुमन या एंड इनके लव अफेयर वाले जो भाई साहब है, शादीशुदा है हमारी ये बहन, ठीक है, बट इनके लवर है, ठीक है। ये एक नर्स रह चुकी क्या है ही नर्स अभी तक, आई एम श्योर अब नहीं रही है, बट वेल क्या किया भाई, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट की ये खबर है। इन्होंने और अपने लवर के साथ प्लान किया कि पति को हटा देना है बीच में रास्ते से।
3: अच्छा
4: जी जी, तो पहले अटेम्प्ट में इनको, इनके पति को दोनों ने मिलकर प्लान किया, छज्जे से धक्का मार के कुछ तो करेंगे। छज्जे से धक्का मारा, चोट लगी, बट सर फिर भी ही वाज अलाइव, बच गए। तो मतलब हॉस्पिटल से करके जब घर आए तो घर में भी ही शी वाज सपोज्ड टू टेक केयर ऑफ हिम कि भाई अब उसको हील करना है, रिकवर करना है ऐसे। बट क्योंकि प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो नेक्स्ट स्टेज, बिकॉज शी वाज अ नर्स, यू नो व्हाट शी डिड, शी एक्चुअली उसका आईवी वो होता है ना इंजेक्शन इंटरवेनस वाला, हार्पिक आईवी दे दिया,
3: हार्पिक का आईवी दे दिया। ओह माय गॉड, ये कहां से आते हैं लोगों के पास इतने ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज, वाओ।
4: अभी तो मतलब ऑब्वियसली जेल में है दोनों के दोनों, द लवर एंड द दिस वुमन, या बट देन वेयर आर दे गेटिंग दीज आइडियाज फ्रॉम।
3: वेल आजकल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडियन न्यूज मीडिया को ऑन करो तो एक ने दूसरे को धक्का दे दिया, दूसरे ने तीसरे को धक्का दे दिया, किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने कुछ। यार ये व्हाई कांट दे जस्ट से हमको डिवोर्स चाहिए या हमको शादी नहीं करनी, इट्स एज सिंपल एज दैट। हार्पिक आईवी नॉट बैड, इट गेट्स बेटर।

0: are tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: And on Radio Masti 24/7, जहाँ पर गाने चल रहे हैं बढ़िया, इस शो का नाम है फ्राइडे सुबह वाला मस्ती मैडनेस. अगर आप सुन रहे हैं ऑनकोर, तो कब है ये अंतरा, क्या चल रहा है, कितने बजे, कब?
2: फिर तो ये है सैटरडे शाम वाला मस्ती मैडनेस.
1: वाह,
3: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें, और हमारा ये क्रेजी शो. दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती.
2: टोटली क्रेजी हम दोनों, एंड ऑल आउट ऑफ द वर्ल्ड.

0: सस्पेक्टेड थीव्स वहां पर पहुंचे, कुछ करने ही वाले थे, तो उन्होंने उनको दर्द पोचा जिसे कहते हैं, ठीक है। अब वो करने के बाद में अब इनका क्या करें, क्योंकि भाई अब नाउ दे वांटेड टू सेट एन एग्जांपल कि भाई याद रखेगी दुनिया दैट टाइप्स, या सो उन्होंने डक टेप लिया, वो ब्राउन कलर का होता नहीं है जब हम दुनिया इलेक्ट्रिकल या फिर वो जो टेप हम लगेज एंड ये सब कार्टन्स को बंद करते हैं, या कार्टन्स को जब करते हैं जब हम शिफ्टिंग करते हैं घरों की एंड ऑल दैट, यू नो उसकी आवाज आती है करके, आवाज भी आती है उसकी, खींचते हो तुम। उन्होंने पूरी बॉडीज इनकी डक टेप में बंद कर दी, ओके पूरी बॉडीज, सिर्फ आंखें और नाक की जगह छोड़ दी कि हाँ देख लो और अपना सांस ले लो, उसके अलावा मुंह बंद, पूरी बॉडी, हाथ भी अंदर करके, जस्ट यू कैन सी इट ऑन आवर सोशल मीडिया एक्चुअली। एंड देन इन्होंने सडनली आइडिया आया इनको कि यार चलो उनको टेलीटबीज बना देते हैं, तो टिंकी विंकी डिप्सी लाला पो वैसे करके उनके कान भी बना दिए डक टेप से, ओके एंड देन उनको साइड में बिठाया चारों को, एंड दे कांट इवन सिट प्रॉपरली बिकॉज इमेजिन योर बॉडी सो स्टिफ बिकॉज द डक टेप इज लाइक ऑल ओवर राइट। एंड देन पुलिस आ रही है उनका इंतजार करते हुए, बट टिल देन ये सारे सारे कॉस्ट्यूम्ड सस्पेक्ट्स वर केप्ट देयर, सो इट्स एब्सोल्युटली फनी द वे इट इज, या
1: मम्मी बना दिया डक टेप से एकदम लपेट लपेट के, ओ माय गॉड। एंड आई कैन ओनली इमेजिन, ओके क्योंकि टेलीटबीज वाला आइडिया ना किसी को पहले नहीं आया होगा, तो डक टेप लगाने के बाद किसी के क्रिएटिव दिमाग में आ गए इसको एक लेवल अप और लेकर जाते हैं, ओके ऐसा कर देते हैं,
0: बिल्कुल पुलिस तो आई नहीं है, जब तक पुलिस नहीं आती तब तक थोड़े क्रिएटिव, बोलो कान बना लो उनके। हमारे सोशल मीडिया पर जाके जरूर देखना आप, दे आर लुकिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। नेक्स्ट टाइम वायलेंस वायलेंस मत करो, बस डक्ट टेप लगा के बिठा दो उनको साइड पे।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning.
5: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
6: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
5: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
6: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
7: जीजी
6: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
7: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: जहां पर एक तरफ इंडोनेशिया के चोरों के साथ ऐसा डक टेप वाला हादसा हुआ, एक और ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं हम मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस।
2: मस्ती मैडनेस एंड गैस्ट्रोनॉमिक खबरों के लिए यहां पर अब सही जगह पहुंचे हैं। दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 एंड ऑफ कोर्स फ्राइडे मॉर्निंग विद रेणुका एंड अंतरा।
1: बेअंतहा इनोवेशन चल रही है इस मार्केट में भी, क्योंकि जहां पर इंडोनेशिया में वहां पे इन्होंने डक टेप का यूज किया एंड उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई। अब चलते हैं आपको लेकर ब्राजील।
2: जी,
1: ये भाई साहब ने और भी कुछ ऐसा नायाब किया। तो भाई बड़े चोर, ठीक है, बड़ी चोरिया मोहल्ले में, और क्या था, इनके घर में फेंस था। फेंस को टाप टाप के जो है यहाँ से एक डॉक्टर साहब के घर से बहुत चोरियां हो रही थी। बहुत ही ज्यादा परेशान होकर फिर अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने टेप कर दिए 12 दर्जन HIV इन्फेक्टेड सीरिंज अपने मेटल फेंस के ऊपर, और वार्निंग साइन ने लिख दिया जिसमें लिखा था कि वॉल विद HIV पॉजिटिव ब्लड, नो ट्रेसपासिंग, एंटर एट योर ओन रिस्क।
2: ये किस तरह के क्रिएटिव आइडियाज हैं, वेरी नाइस।
1: आई हैव लाइक वही मतलब आइडिया तो आइडिया, डॉक्टर साहब ने अपना मतलब वो वाला डॉक्टरी वाला दिमाग लगाया कि कुछ न, अच्छा ये भी है, इट्स वेरी साइकोलॉजिकल एज वेल, यू नॉट श्योर कि वेदर इट इज एक्चुअली इन्फेक्टेड और नॉट, बट इफ समबडी टेल्स यू, would you go for it?
2: Now, well, the thing is that exactly. So many years ago, do you remember Delhi में सुनने में आती थी ऐसी बातें कि लोग सुई चुभा देते हैं बसेस में, या you know जब आप भरी भरी किसी जगह पे जाते हो और फिर HIV हो जाता है लोगों को, you know they are just moving around with those needles. So I had a couple who had visited me in Singapore, right? And वो क्या हुआ कि जो यहाँ पर किसी के जूड़े का पिन हमारे जू की ट्रेन में रह गया होगा, एंड दिस लेडी माय फ्रेंड जस्ट सैट उस पे और उसके हाथ पे लग गया, जिसकी वजह से उसका हल्का सा ब्लड आने लगा, ओके, किसी का निकल गया होगा। सो देन शी स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज शी केम फ्रॉम दिल्ली टू विजिट मी, शी स्टार्टेड क्राइंग कि अब तो मैं मर जाऊंगी, मुझे HIV पॉजिटिव हो गया। आई सेड तू सिंगापुर में है बहन, तू व्हाट इज रॉन्ग विद यू, बट शी हाउल्ड, शी इवन सेड कि मेरे बच्चे तू देख लेना अगर मुझे कुछ हो गया, दिस एंड दैट। सो आई स्टिल लाफ अबाउट इट, because many years later I pick up the phone and say, bachche kahan hai tumhare, wo to mere ho gaye the na aur tum abhi tak zinda ho
1: poor thing man, I can completely imagine what she would have like, uska trauma itna gehra hota hai in sari cheezon ka, it's more psychological like I was saying, really? Oh my god,

0: वक्त बदल रहा है और ये वाली खबर को आप बिल्कुल काफी ध्यान से सुने। वेल, वक्त बदल रहा है और उसके साथ साथ में ऑफिसेज में काम करने वाली नई जनरेशन आ रही है और उस जनरेशन का नाम है जेन जी, जो काम कर रही है जेन एक्स के साथ। मुबारक हो।
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो, दिस इज मस्ती मैडनेस।
2: भाई जिस हिसाब से इस कॉम्बिनेशन पे मीम्स जो है बन रहे हैं एंड they are hilarious and so very relatable at the same time.
0: Absolutely. So well, अब हाल ही में हुआ कुछ ऐसा कि एक Gen Z का जो employee है Gen Z, वो अपने manager के साथ में उसकी लग गई. So basically हुआ कुछ ये कि ये जो employee है Gen Z, उसने inform किया अपने manager को कि भाई fever बढ़ गया है, तो sir नहीं आ पाऊँगा. तो manager ने जवाब दिया कि चलिए आपको doctor के पास ले चलते हैं. तो एम्प्लॉई ने जवाब दिया, नीड लगेगा तो बताऊंगा सर, अभी के लिए पैरासिटामोल. तो भाई थोड़ी देर के बाद मैनेजर जो है उसने कहा, डायरेक्टर सर ने कहा है कि जो बीमार हो उससे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लो. इसका मतलब है कि भैया हम नहीं मानते तुमको. तो उस जेन जी एम्प्लॉई ने फटाक से जवाब दिया, वो भी सारा टेक्स्ट पे, मैं स्कूल स्टूडेंट नहीं हूं सर, लीव रहती है, लीव ली मैंने, खुद डॉक्टर है वो, उनको बोलो मेरे नाम की प्रिस्क्रिप्शन बना ले, नहीं तो प्रिस्क्रिप्शन और लीव एप्लीकेशन विद पेरेंट सिग्नेचर नहीं है मेरे पास और मैं अभी रेस्ट कर रहा हूं, मैसेज या कॉल का रिप्लाई नहीं करूंगा. लव इट.
2: ये तो बहुत ही सैवेज था.
0: टोटली. मतलब स्क्रीनशॉट सारी दुनिया में घूम रहे, मतलब तुम क्या स्कूल के बच्चों की तरह क्यों, मतलब हम कोई स्लेव्स हैं या हम एम्प्लॉइज हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, राइट? तो आपका क्या ख्याल है?
2: Actually, that is why they are Gen Z, okay? Because so they do the same thing. A millennial would have reacted very differently, okay?
0: Exactly.
2: The Gen Zs are like this. Bhai, kya bhai? Ab hum aa chuke hain bahar, school se aa chuke hain. Main wahi pe millennial, bhai, uska bus chalta to shayad wapas office aa hi jata ki mujhe kya itni explanation nahi deni, main aa hi jata hu.
0: But it has been for generations. ये बात चलती चली आ रही है कि भाई जब बंदे को सिर्फ थोड़ी सी, वो कहते ना हरारत, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ी बॉडी पेन हो रही है, तो वो दो पैरासिटामोल लेके घर में आराम करेगा rather than उठ के जाएगा MC लेने के लिए. और फिर लेकिन कंपनीज कहती हैं हम कैसे माने. तो अभी तक for generations ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है. वैसे एक बात तो है.
3: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: कैसे कैसा बनना चाहते हो अगर आप एक दिन 96 ईयर ओल्ड हो जाते हो, कैसा बनना चाहते हो?
1: मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस।
2: आई लव द वे शी सेज एक दिन 96 इयर्स ओल्ड हो जाते हो। हेलो, उससे पहले 1991, 92, 93 भी तो हो गए ना, हमें नहीं होना इतना। गुड मॉर्निंग मस्ती मैडनेस पर, जी नहीं, इतनी भी दीर्घायु की कामना ना करते हुए रेणुका यहाँ पर। लेकिन हाँ, क्या हुआ 96 में, बताओ बताओ
0: भाई। ये जो ग्रैंडमा है हु इज 96 ईयर ओल्ड, ग्रैंडमा ड्रोनियाक के नाम से ये जारी जाती है, एंड शी इज अ टिकटॉक स्टार बाय द वे एट 96।
2: हैं, ओके, शी मस्ट बी द ओनली वन एट 96 ऑन टिकटॉक।
0: या शी हैज गॉट 15 मिलियन फॉलोअर्स।
2: यार ठीक है, वो थोड़े दिन की बात है, फिर तो वो बंट ही जाएंगे।
0: व्हाट इज दिस, थोड़े दिन की बात है नॉट सो वेल। एनीवेज, तो भाई ये जो हमारी ग्रैंडमा है, इनकी एक दिक्कत आ गई है, क्योंकि हुआ कुछ ऐसा दैट ये जिस रिटायरमेंट कम्युनिटी में जहाँ पे रहती हैं, तो वहां से इनके पास आ गई है फॉर्मल वार्निंग, क्योंकि इन्होंने होस्ट की काफी सारी, ये होस्ट करती रहती हैं लेट नाइट गेट टुगेदर्स एंड सर्विंग अल्कोहल टू अदर रेसिडेंट्स। ओके,
2: हाँ,
0: तो ये जो लेटर है, जो इनके पास वार्निंग लेटर आया, तो वो टिकटॉक पे अपना वीडियो बनाते हुए दिखा रही है दैट नॉइस कंप्लेंट्स एंड सिक्योरिटी फुटेज शोइंग विजिटर्स लीविंग इनका रूम रात के एक एक दो दो बजे, वार्निंग दैट कंटिन्यूड इंसिडेंट्स कुड पुट हर रेसिडेंसी एट रिस्क। सो बैक डाउन करने के बजाय हमारी ग्रैंडमा जो है, उन्होंने कैमरा पे पहाड़ी चिट्ठी सबसे पहले,
2: हाँ,
0: और कहा $12,000 दे रही हूँ पर महीना यहाँ रहने के लिए, इंजॉय तो करके जाऊंगी चाहे कुछ भी होता हो।
2: एक्चुअली ऑन सेकंड थॉट्स 96 के गोल तो मेरे कुछ ऐसे ही हैं, जो तो मैं बच गई, तो आई प्रॉमिस कि मैं भी मतलब मचा के जाऊंगी, बाय गॉड। हाँ, दुखी हो जाए, कंप्लेंट्स हो जाए, बहुत कुछ, और फिर कोई आए और बोले बुढ़िया रहने दो।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू, that too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: भाई आजकल ऐसा है कि खबरें हमारे पास अपने आप ही आ रही हैं, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, वी स्टार्टेड साउंडिंग लाइक वन ऑफ दोज केसरी बाजार टाइप की न्यूज़पेपर्स ऑन मस्ती मैडनेस, बिकॉज सच्ची एक से बढ़कर एक खबर आ रही है। अब ये वाली सुनो जरा,
3: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो।
4: This is musty. Most amazing fact is it never ends. It is never ending. It just pops up every single time we do this episode, any episode of musty madness.
2: ये देखो जरा आप। अब मैं आपको लेके जा रही हूँ ग्वालियर, ठीक है? Now you have to listen to this one. आप जिंदगी में जितने भी busy इंसान हैं, इस time पर सब कुछ side पर रखो और ये वाला सुनो, alright? It's really funny. It's a marriage fraud case, okay? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक नई नवेली दुल्हन, पता लगा उसके पति को कुछ time के बात कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है। वेल दैट्स नो बिग डील, लेकिन उससे भी बड़ी कहानी ऐसी है कि उसकी शादी पे जिस भाई ने उसका कन्यादान किया था, ओके, वो एक्चुअली उसका पति था। सो एग्जैक्टली, सो बेसिकली इस पति पत्नी ने मिलके प्लान बनाया था कि पत्नी की शादी करा देंगे कहीं पर, फिर वो उसके सारे पैसे पुसे लेके भाग जाएगी एंड यू नो थिंग्स लाइक दैट। सो वो भाई बनकर आया था उसका, जो एक्चुअली पति था, उसने कन्यादान किया था, विच इज द फनीएस्ट थिंग, ऑलराइट। एंड फ्यू डेज लेटर भाई इसने देखा कि ये न्यूली वेड मेरी जो बीवी है, वो पूरे टाइम अपने फोन पे चैटिंग करती रहती है, व्हाट इज गोइंग ऑन, है ना? तो 7 लाख तो शादी पे खर्च दिए और सेरेमनी पे एक माँ भी बनके कोई आई थी, जो कि वहां पर यू नो साथ में ब्राइड की फैमिली से थी, ये भाई आया था बनके। और फिर उसने पति ने खैर थोड़े दिन के बाद उसका देखा चैट्स, तो पता लगा अरे ये तो अपने हस्बैंड से बातें कर रही है। एंड दे यूज टू मीट छुप छुप के, और जो घर के सारे पैसे हैं वो भी धीरे धीरे जा रहे थे बाहर। सो इट गेट्स बेटर, आई टेल यू।
5: क्या क्या हो रहा है भाई, क्या क्या हो रहा है, मतलब कोई सीधी बात करने को तैयार ही नहीं है,
2: हम है ना?
5: सब इधर उधर घुमा घुमा के, मतलब पति कुछ बन जा रहा है, कोई कुछ बन जा रहा है, सब कुछ ना कुछ बने ही जा रहे हैं,
2: हम है ना? हमारा भी तो बना रहे हैं सब, यहाँ पर बैठे हुए हम सीधी बात करते हैं हमेशा, तो देख लो कुछ फायदा नहीं इस दुनिया में, कोई फायदा नहीं, सब टेढ़ी बातें करनी चाहिए, सीरियसली।
5: सही में सही।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: मैं कैसे बताऊंगी ये, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है. मुझे तो घिन पहले आ रही है, बता, चलो बताना तो पड़ेगा ही.
3: घिन आ रही है. I have not heard that word for so long.
4: Crazy दुनिया, crazy खबरें और हमारा ये crazy show.
3: घिन आ रही है. पता है बचपन में ये गिन और घिन में मेरे को बहुत कंफ्यूजन होती थी. बट लेट्स मूव ऑन. बताओ बताओ.
2: So, imagine करिए कि आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है. एंड दिस इज वन ऑफ दो स्लीपर क्लास की ट्रेन जहां पे कभी कभी खिड़कियां और खिड़कियों में रॉड होते नहीं है. स्लीपर क्लास वाले डब्बे बिल्कुल ही, जो बिल्कुल जस्ट जी रहे हैं वो किसी दम पे. एंड उसमें ना ठूस ठूस के लोग भरे हुए होते हैं, ठीक है. सो अब आप लेटे हुए, ठीक है, नीचे वाली बर्थ पे, और आपके सर के ऊपर वो बड़ी सी खिड़की है विदाउट एनी जो है
3: वेंटिलेशन, जो लोहे के. हाँ, करेक्ट.
2: पूरा ही मतलब फुल हवा आ रही है एंड सब कुछ, एवरीथिंग इज ओके. तो ये बंदा जो है उठ के जाता है सुबह, एक आंटी लेटी हुई है और ये बंदा उठ के जाता है. भाई बिकॉज व्हाटएवर रीजन इट वाज, भाई को लगता है कि यार मेरे को हल्का होना है तो मैं काम करता हूँ, मैं सीधा इस खिड़की से ही हल्का हो लेता
3: हूँ. ओह नो, प्लीज नो. ओके,
2: सो भाई करते हैं तो फॉर सम वेरी, बहुत ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा होगा कि उड़ उड़ के छींटे जो है वो आंटी के शक्ल पे नहीं आए. बट जो क्या होता है ना कि यहाँ पे थोड़ा सा साइंस फिजिक्स यहाँ पे काम करती है, क्योंकि ट्रेजेक्टरी जो है ना वो पहले बहुत एंगल में दूर जाती है लेकिन वो फिर वो पास आने लगती है बिकॉज़ आपका प्रेशर कम हो जाता है.
3: करेक्ट, वो तो है.
2: ये सारी चीजें साइंस होते होते फिर वो आपके हाथ पे भी थोड़ा, भाई उसने अपना जिप अप किया, हाथ ऐसे करके झटका जैसे होता है ना करके,
3: ओके.
2: और तब जाके वो कुछ छींटे जो है वो आंटे उसके बाद.
3: I'm not going to. Why did you have to explain so much? मतलब, okay. So,
2: तो yeah. मजा तो explanation में था, क्योंकि जब आप visually आप उसको सोचो, तो मतलब घिन, I घिन.
3: Okay. So, अगर आप ट्रेन में कहीं जा रहे हैं और आप पे छींटे आए तो आप समझिए कि ऊपर वाले ने बरसात करी है, कुछ अलग तरह का नमकीन पानी बरसा है आप पे. My God, we are talking absolutely atrocious stuff right now. Radio Musty 24/7 taking a short musical break यहाँ पर.
5: Oh, yeah.

0: Alpha, the newest chapter in the YRF spy universe.
1: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई।
0: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडियाज फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट।
2: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है।
0: बॉर्न टू फाइट बिल्ट टू सर्वाइव। अल्फा रिलीजिंग 3rd जुलाई आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट।
3: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space, Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: भाई आज मेरी किस्मत में सारी की सारी ऐसी खबरें हैं जो कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप पर ज्यादा फोकस्ड हैं, बट दिस वन इज येट अगेन अनदर इंटरेस्टिंग वन, जो मेरे को समझ नहीं आ रहा पहली वाली इंटरेस्टिंग थी या ये वाली।
1: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: ये तो हम सुनने के बाद बताएंगे, बताओ बताओ।
0: एम्प्लॉई
2: लेके आए हैं,
0: ये देखो जज बने बैठे हैं। But yeah, seriously, I tell you the limit to which employers can go nowadays. So what had happened was कि इस सच की खबर ये कि कुछ दिन पहले एक एक आदमी ने resign किया अपनी नौकरी से because of the simple reason that he was not sure कि उसका boss कह क्या रहा है। So इसने बताया था अपनी कंपनी में कि भाई उसकी शादी होने वाली है एंड ऑल दैट स्टफ, ऑलराइट। और फिर जब समय आया तो इसने छुट्टी के लिए अप्लाई किया एंड देन ही गॉट द सरप्राइजिंग लेटर फ्रॉम द सीईओ सेइंग सॉरी बट योर छुट्टी इज नॉट अप्रूव्ड। एंड द गाय वाज व्हाट, इट्स नॉट, मतलब क्या? तो इसको जवाब ये लिखा था कि भाई प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज क्रिटिकल फेज पर इस टाइम पर, सो सॉरी आपकी छुट्टी बिल्कुल भी मंजूर नहीं हो सकती है। तो इसने रिजाइन कर दिया। नाउ द बॉस इज लाइक, यार ऐसी क्या बात हो गई, यू नो व्हाट इज इट। ऑफ कोर्स द बॉस हैड फॉरगॉटन एंड द बॉस हैड सजेस्टेड दैट व्हाटएवर इवेंट यू हैव टू अटेंड यू कैन अटेंड ऑन गूगल मीट। ओके, सो इसने बोला सॉरी बट He just said, sorry, but this is my wedding we are talking about and I'm not going to attend it on Google Meet. Thank you. And therefore, I resign. Haan. Now, ye sari ki sari baat jab viral hone lagi, toh bhai pucha gaya, ye kya hua? What is this going on? So, boss bhool gaya tha. की शादी हो रही है, ठीक है चलो, इट टॉक्स अ लॉट अबाउट कंपनी कल्चर कि भाई किसी की शादी हो रही है एंड यू वर्किंग सो क्लोजली, इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है तो तुम उसकी याद रखो यार। लेकिन सजेस्टिंग कि भैया शादी गूगल मीट पे अटेंड कर ले, हम छुट्टी नहीं दे सकते, इज ऑल्सो, चाहे तेरी है चाहे किसी और की, इट्स ऑलरेडी सो वॉट डू यू थिंक अंतरा, तुम्हारी शादी गूगल मीट पर हो सकती है?
2: Well, I would have done the same जो इस बंदे ने किया, भाई तू resignation रख, मैंने नहीं काम करना तेरे पास, ऐसे मतलब ये क्या है, इतने से इतनी बात भी नहीं आज रह पा रही है तो फिर मतलब ठीक है, ओके टाटा बाय बाय।
0: सीरियसली
2: ऊपर से तो उसको कह रहा है कि गूगल मीट पे अपना इवेंट अटेंड कर,
0: बताओ बताओ इतना क्लोज है यार, अगर छुट्टी दे भी देता एक दिन शादी की, अगले दिन रिसेप्शन पे कहता आई सॉ यू वर नॉट वेरी एक्टिव ऑन टीम्स, क्या बात है, कहाँ थे तुम?
3: एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में, वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

टू रूलिंग द काउंटडाउन. ये है मस्ती टॉप 20. नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट द वीक्स टॉप.

0: ऑलराइट, और इसी के साथ में टाइम फॉर मी टू गो आल्सो। आज तो उफ, मैं भी फ्राइडेज को जाने लग गई हूँ आजकल तो घर।
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें, और हमारा ये क्रेजी।
0: अंतरा, इसी के साथ में मुझसे सपना जी ने पूछा, कहाँ हो तुम फ्राइडे सुबह लास्ट टाइम? बोला कि आज कहाँ जा रही हो, बताओ ना कौन सी जगह छुट्टी पे जा रही हो, तभी तो तुमने शो का टाइम चेंज किया। मतलब देखो, शक की बिना पर मुझे कोई छोड़ नहीं रहा।
2: होता है, ऐसा ही होता है, बट देन इट्स क्वाइट फन, ओके। बट इसी के साथ साथ भाई, नॉट ओनली दैट, सपना जी ने इनको ऐसा बोला है तो आरती जी ने इनको अल्फा वुमन डिक्लेयर कर दिया है भाई, नॉमिनेट किया है इनको।
0: हाँ, आरती गर्ग, वेल यार, आई रियली लव हर, बिकॉज वो हमेशा ना मेरी बड़ी पॉजिटिव साइड को देख के बहुत, मुझे भी बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है। सीरियसली, किसी की इतनी बढ़िया चॉइस कैसे हो सकती है? थैंक यू।
2: आई नो, टोटली। आपकी भी, आपकी जिंदगी की अल्फा वुमन की जो बढ़िया चॉइस है ना, आप वो हमें प्लीज बताइए, बिकॉज दैट कैन मेक यू विन ये अल्फा के टिकट। कैसे विन करेंगे उसका भी एक प्रोसीजर है, ठीक है? ऐसा भी नहीं है कि मतलब आप पहले देखिए कि आपके आसपास जो कोई ऐसी इंस्पिरेशनल फिगर जो इनको देख के आपको लगता हो कि भाई इन्होंने ये है अल्फा वुमन, लाइक इन ट्रू सेंस, सो आप उनको नॉमिनेट करें, बताएं क्यों आपको लगता है कि वो अल्फा वुमन है, एंड देन यू टेल अस, एंड उसके बाद हम आपको बताएंगे कि वाह वाह, मुबारक हो, बहुत अच्छा कहा आपने, बहुत अच्छा लिखा आपने, एंड आप जाइए अल्फा देख कर आइए, और एक अल्फा मूवी टिकट आपकी जो है वो हम करेंगे रीइंबर्स, लेकिन सिर्फ 10 फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व।
0: बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो भाई, आपको सिर्फ यही करना है कि जाकर इस वीकेंड पर बिफोर संडे आपको जाके देख के आनी है अल्फा फिल्म, और फिर हमें भेज देनी है अपनी टिकट, क्योंकि हम आपको उसके पैसे वापस करेंगे। लेकिन उससे भी पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको बताना है कि आपकी जिंदगी में अल्फा वुमन कौन है। आप खुद भी हो सकते हो, यू डोंट नीड टू हैव समबडी एल्स, राइट? एंड जस्ट टेल अस व्हाई ऑन रेडियो मस्ती 24/7। टाइम फॉर अस टू से बाय बाय एंड एंजॉय द वीकेंड। ओए हो, जो कि शुरू हो रहा है, अब शुरू हो रहा है, अब
3: निकला गड्डी लेके।
0: चलो अंतरा, निकलते हैं गड्डी लेके।
3: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: रास्ते पे जो भी है, एक मोड़ आएगा और मैं मसाज पार्लर के अंदर जाऊंगा। ओके,
4: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: They were not chosen. They were created.
2: उसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे।
1: Alpha. The newest chapter in the YRF spy universe.
3: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई।
1: आलिया भट्ट and Sharvari in India's first female-led action spectacle, where every decision could be their last.
4: Alpha program उसका जुनून है, और जो भी उसके रास्ते में आता है, वो उसे मार देता है।
1: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island-wide at the cinemas near you. Brought to you by Home Screen Entertainment.

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। Have a मस्ती भरा वीकेंड

सुना था यहाँ आदमी पूरी जिंदगी अपनी किस्मत स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक लाने में निकाल देता है, पर 2.5 घंटे में मेरी किस्मत ऐसे स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक पर आ जाएगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। सजा मजा बन जाएगी।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
3: The perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
2: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: मेरा पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें। वीकेंड का मजा विद द

0: इस वीकेंड वॉज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वॉज अ गर्ल, इस वीकेंड वॉज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वॉज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है। ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
1: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
1: रात अकेली है। जोश में रहो।
0: The perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 live.

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट
4: रात अकेली है
5: तो क्या हम तो आपके

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो। Take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out.
0: रात अकेली है तो क्या, हम

0: यार नाटक ना कर, नच ना यार नच ना।
1: अरे अरे छोड़ो यार, मैं नहीं नाचूंगा वाचूंगा।
2: ओए पुत्र नच ना, भैन की सगाई चा भाई नचना ही पैंदा।
1: हाँ हाँ तो फिर बड़े भैया को नचाओ ना।
3: क्यों, तेरी भी तो भैन है।
4: गल चंगी बोली।
5: ओ कम ऑन शेखर, नाचो ना।
1: नहीं नहीं मुझे नहीं नाचना।

कहां से कहां जाऊं, कहां मैं छुप जाऊं, ये आधा सा दिल मैं कैसे लगाऊं, हूं खुद से जुदा।

जिस दिन से वो डॉन बन गया डरने लगे लोग, ऐसा तूफान बन गया। और क्या कहूं मैं, सारा जहां था उसके कदमों में।

0: बड़ी पेंदी हुंदी जे फिर ना क्यों दस्या नहीं ते मुड़ के जे कित मेरे वांगू फड़े गए ना ते फिर कहंदे फिरोगे सॉरी अंकल सॉरी मैं तो ट्यूशन बारे पुछण आया सी।
1: जादू है नशा है
2: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना।

ची पाकी जुमे रात आई है जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत आई है। कोकला ची पाकी जुमे रात आई है जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत आई है। कोकला ची पाकी जुमे रात आई है जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड, मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। हैव अ मस्ती भरा वीकेंड।